FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शिक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 19 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की

FM 103 MHz पर हम आकाश वैन के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद 6:05 पर हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे। कृपया बने रहें हमारे संग और आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।

0: فرحت ناز. मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12,000 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारे दिल्ली केंद्र से भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें।

0: जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
1: बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज की कड़ी में हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव पर। श्रोताओं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्यान्न, पोषण एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे देश में 60% से भी अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% योगदान देती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सन 1950-51 में खाद्यान्न का उत्पादन 51 मिलियन टन था, जो कि 2011-12 में बढ़कर 250 मिलियन टन हो गया था। इसी प्रकार से तिलहनों का उत्पादन भी 5 मिलियन टन से बढ़कर 28 मिलियन टन हो गया था। विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न पदार्थों जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, फल, चाय, कपास, गन्ना इत्यादि के उत्पादन के संदर्भ में भारतीय 3 शीर्ष स्थानों पर जगह बनाने में कामयाब रहा। लेकिन आज वही भारत विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा का कम या ज़्यादा होना, पवनों की दिशा में परिवर्तन आदि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। ये ग्रीन हाउस गैसें धरातल से निकलने वाली अपरक्त विकिरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों तथा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है और इससे बाढ़ एवं चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कृषि पर अनावृष्टि का संकट सबसे ज़्यादा है क्योंकि आज भी सिंचाई से संबंधित व्यवस्था मानसून पर ही आधारित है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात तथा उत्तर पश्चिम भारत में पाले तथा मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं कृषि उत्पादन पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं। जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फसलों, मृदा, मवेशी, कीट पतंगों पर प्रभाव देखा जा रहा है और इससे कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मानसून के दौरान वर्षा अवधि में कमी आई है। शीतलहर एवं पाला, तिलहनों तथा सब्जियों के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2003 में जनवरी माह में शीतलहर के कारण विभिन्न खाद्य पदार्थों में जैसे आम, पपीता, केला, टमाटर, आलू, मक्का, चावल आदि के उपयोग पर अधिक प्रभाव पड़ा था, उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2004 में मार्च माह में तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप गेहूं की फसलें अपने निर्धारित समय से 10-20 दिन पहले ही तैयार हो गई थी, जिससे पूरे भारतवर्ष में गेहूं के उत्पादन में 4 मिलियन टन से भी ज़्यादा कमी आई थी। इसी प्रकार से वर्ष 2009 में अनियमित मानसून के कारण चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जलवायु चरम सीमा तक परिवर्तित हुई है। जलवायु परिवर्तन विभिन्न प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में उपजाऊ मृदा, जल, अनुकूल वातावरण, कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक फसल को विकसित होने के लिए एक उचित तापमान, उचित प्रकार की मृदा, वर्षा तथा आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के जलीय चक्रण को प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचता है। बागवानी फसलें अन्य फसलों की अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उच्च तापमान सब्जियों की पैदावार को भी प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करता है, जैसे खरपतवार को बढ़ाकर फसलों और खरपतवार के बीच स्पर्धा को तीव्र करता है, कीट पतंगों तथा रोग जनकों की श्रेणी का विस्तार करता है। कृषि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि फसलों की ऐसी प्रजातियों को विकसित करना चाहिए जिनमें शुष्कता एवं लवणता का दबाव सहने की क्षमता हो और जो बाढ़ एवं अकाल के प्रभाव से

0: तथा सिंचाई एवं जल संबंधी व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए। नई कृषि तकनीकियों जैसे कि संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल विविधीकरण, कीट प्रबंधन को सुधारना, मौसम पूर्वानुमान व्यवस्था में सुधार लाना इत्यादि को अपनाना होगा, तभी कृषि उत्पादन सही ढंग से हो पाएगा। और आज की जानकारी यहीं तक।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, स्वर था सुनीता अग्रवाल का। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 200।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

रेगिस्तान पर रेत के ऊपर जब तेज धूप पड़ती है तो वहाँ जल का आभास होता है और पानी की आस में प्यासे वहाँ पहुँचते हैं, तब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वह मात्र छलावा, मिथ्या भ्रम है और इसके सिवा कुछ भी नहीं, और यही मृग तृष्णा है। जीवन में हम सभी किसी न किसी आभास या मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं और कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उस भ्रमजाल में उलझे रहते हैं जो है ही नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में होता है और वह उसकी तलाश में जंगल जंगल भटकता है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत बनमाही, ऐसे ही अज्ञानता मनुष्य को पथ से भटका देता है। हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, इसकी तलाश में लोग पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि स्वयं के पास ही बहुत कुछ है करने के लिए। भ्रम जाल में उलझा मनुष्य भटकता रहता है, भ्रम की माया मोह बंधन के कारण उचित रास्ता नहीं मिल पाता है। भ्रम की स्थिति में सुख चैन सब लुट जाता है। मनुष्य उस चीज की तलाश में लगा रहता है जो वास्तव में है ही नहीं, या फिर जिसे पाना संभव ही नहीं। पानी से भरे परात में चांद का प्रतिबिंब चांद होने का भ्रम है, क्योंकि वह हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता है। विवेकशील व्यक्ति इसे समझते हैं, किंतु अज्ञानी इसे पकड़ने में अपना समय और शक्ति व्यर्थ में गंवा देते हैं। लालसा, असंतुष्टि और तृप्ति ही व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और इस मृग मारीचिका के पीछे पीछे वह भागता रहता है ता उम्र, अपने जीवन के अमूल्य पलों को गंवा देता है और फिर पछताता है। लेकिन जिनके आँखों को भ्रम जाल हट जाता है वह अपना जीवन सार्थक कर लेता है, साथ ही अन्य लोगों का भी वह कल्याण करता है। जैसे चंदन वृक्ष के आसपास अन्य भी सुवासित होते रहते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो विवेकशील होते हैं अपने आसपास के लोगों को भी सही रास्ता दिखाते रहते हैं। जिन्हें अंत तक आभासी के भ्रम से मोह भंग नहीं हो पाता है, वो प्यासे हिरण की भांति मृग मारीचिका में फंसकर हताश, निराश, प्यास की तड़प से मर जाते हैं, और यह दुखद है, चिंतन का विषय है। मनुष्य जीवन अनमोल है, ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है ताकि वह सोच समझ सके और अपने जीवन का सदुपयोग कर सके, साथ ही साथ प्राणियों जीव जंतुओं का भी पोषण संरक्षण करता रहे। इसलिए अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। व्यर्थ की तलाश में अस्थिरता परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी।

आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम के तहत निर्मला तिवारी को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल को।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। और अब ये सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसके तहत डॉक्टर ऋषि से ली गई भेंट वार्ता, ये सुनवाते हैं आपको। फैटी लिवर कारण एवं निदान, भेंट करता है श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां निकलकर सामने आ रही है और हमारी जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित कर दे रही है। एक ऐसी ही बीमारी है फैटी लीवर की। 10 में से लगभग 7-8 लोग फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है, और ख़ासकर जो व्यक्ति नशे का सेवन

0: करता है, अल्कोहल लेता है, उसे ये बीमारी ज़्यादा पकड़ रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, वो भी फैटी लिवर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों इस तरह की बीमारी आजकल हो जा रही है, और समय रहते हैं इसका हम उपचार कैसे करें, और सबसे अच्छी बात कि हम सावधानियाँ क्या क्या रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं आयुर्वेद एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: जी नमस्ते।
0: डॉक्टर साहब, ये फैटी लिवर क्या है और ये कॉमन क्यों होता जा रहा है?
1: जी, ऐसा है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप अपने प्रैक्टिस में 10 लोगों को अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो उसमें 7 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर आ रहा है। तो ये आम चिकित्सकों के लिए एक बहुत पैनिक सा कंडीशन हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इस पे गहन अध्ययन करते हैं और इस पे अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये पता चलता है कि मुख्यतः जो लीवर की समस्या होती है वो पहले अल्कोहल के कंजप्शन से होती थी। अल्कोहल लेने से लीवर में सूजन आ जाता था, जिसे हम लोग फैटी लीवर बोलते थे, जिसको बोलते थे अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उससे ज़्यादा जो हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण है और वो है आपकी दिनचर्या, आपका आहार विहार, आपका रहन सहन, आपका फूड हैबिट्स। तो जब हम ये देखते हैं कि आज के डेट में लोग फास्ट फूड पे, जंक फूड पे, प्रिजर्वेटिव फूड पे आश्रित हो गए हैं, सीजनल फूड नहीं लेते हैं, बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा आश्रित होते हैं, तो इस वजह से आप का जो फैटी लीवर है वो धीरे धीरे आम जनों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऐसा देखते हैं कि आप अगर ऐसे कंपेयर करेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये काफ़ी बड़ा है, तो 5 से 10 सालों में लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप रात को सोते नहीं हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, फिर दिन में आप फास्ट फूड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद फिर आप अगर अल्कोहल भी लेते हैं तो वो कंडीशन और पैनिक हो जाता है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिक को अगर ठीक करेंगे, अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आहार विहार को ठीक करेंगे, तो हम फैटी लीवर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
0: मतलब हमारी जो बदलती जीवन शैली है, या यूं कहें बिगड़ती जीवन शैली है, वो बहुत हद तक इस फैटी लिवर की बीमारी के लिए जिम्मेदार है।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारे खाने पीने, उठने बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रात तक जगे रहते हैं, जैसा आपने बताया, जब मन किया सो लिया, जब मन कर लिया खा लिया, और खाना भी कैसा, वो तैलीय पदार्थ, और ये हमारे लीवर को रोगग्रस्त कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसका पहचान क्या है और समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी पहचान क्या है। तो जैसे ही फैटी लीवर स्टार्ट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आपको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, तो लोग को लगता ही नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है, और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक स्टेज बहुत आगे बढ़ गया होता है। तो ये एक दिक्कत सी कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में ही डायग्नोस हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ही है, तो अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाते हैं तो वो 10 से 15 दिन की दवाइयों में आपकी फैटी लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि हमें रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, जैसे LFT हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उससे पता चलता है कि आपकी लीवर का साइज वगैरह क्या है। साथ में अगर हम CBC करा लेते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं, तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट है, इससे अगर आप चाहें तो निरंतर करने रहने से हम लोग फैटी लीवर को बहुत ही स्टार्टिंग में ही पता कर सकते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये पता चल जाता है।
0: और यदि लक्षण दिखने लग जाते हैं, यदि हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ये सारी जो रूटीन टेस्ट है नहीं कराते हैं, तो फिर लक्षण क्या दिखने लग जाते हैं इसके?
1: हाँ, लक्षण में क्या है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पैर में सूजन आ जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीवर का फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिज्म, मतलब आपकी पाचन शक्ति वो कमज़ोर होने लगेगी। और लीवर का एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना, मतलब जो हम खाना खाते हैं उससे जो सार भाग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडीज़ को मिलता है, और एक लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर निकालता है। तो अगर हमारा लीवर फैटी लीवर की तरफ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो डाइजेशंस है वो प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको आलसी बनाने लगेगा, फिर आपके पैर में सूजन होने लगेगा, आपका खाना अच्छे से नहीं पचने लगेगा। तो ये सारी समस्या आपके फैटी लीवर्स की आती है।
0: डॉक्टर साहब, यदि शुरुआती लक्षण हमें दिखने लग जाते हैं या हमने रूटीन टेस्ट कराया और मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है, तो फिर इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है?
1: देखिए, आज हम आज के इस सेशन में मैं यह बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लीवर की समस्या इज इक्वल टू आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद पे आयुर्वेद चिकित्सा लेते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और आयुर्वेदिक कुछ औषधियों से 100% ठीक होता है। तो इसमें एक आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। अगर हम विरेचन लेते हैं, जो कि एक पंचकर्म का प्रोसेस है, तो विरेचन से आपका लीवर खुद डिटॉक्स हो जाता है, मतलब वो शुद्धिकरण हो गया लीवर का, और उससे आपकी लीवर की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। और उसके बाद कुछ अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिंस लेते हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ अगर अपने वैद्य से या चिकित्सक की सलाह से जो भी वो आपको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पुनर्नमा से बनी हुई चीज़ें हो गई, भुई आंवला से बनी हुई चीज़ें हो गई, भृंगराज से बनी हुई चीज़ें हो गई, तो ये जो चीज़ें जो हमारे आसपास ये मिलती भी हैं ये चीज़ें, तो इसका सेवन करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऋतु शोधन, कि हर शरद ऋतु में अगर हम एक विरेचन ले लेते हैं तो हमसे लीवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं वो खत्म हो जाएगी और हम एकदम स्वस्थ रहेंगे
0: जी। और यदि फैटी लीवर की समस्याएं ज़्यादा हो गई है तो फिर उपचार किस प्रकार किया जाता है और कितना वक्त इसमें लग जाता है?
1: हाँ, अगर आप लीवर की समस्या से ग्रसित हो गए तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें। वो एक आपको एक प्लान बना के देंगे कि कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, आहार विहार को ठीक करेंगे, आयुर्वेदिक औषधि लेंगे और साथ में पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो चालू रखेंगे। तो आने वाले 3 महीने में अगर आपका लीवर बहुत डैमेज हो गया, मतलब आप ऐसे 3 स्टेज हम लोग देखते हैं, पहले फैटी लीवर, और फैटी लीवर को अगर छोड़ा जाए तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसिस से वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सरोसिस से फाइनली वो लीवर कैंसर में मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है,
0: मतलब समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है।
1: हाँ, क्योंकि अगर हम फैटी लीवर्स में ही कंट्रोल नहीं किया जाए तो लीवर का एक अपना ऐसा गुण होता है कि वो लीवर के सूजन्स को कम करने के लिए लीवर उसमें एक स्कार बनाता है, मतलब कि उसके चारों तरफ एक छाया, मतलब उस पर एक दाग आता है, और दाग आने से लीवर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मतलब टफ होते जाता है, हार्ड होते जाता है, और उसका जो सिक्रीशन है, लीवर का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे धीरे डैमेज होता जाता है, और वो धीरे धीरे लीवर फेल्योर की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगर वो हम लोग लीवर फैटी लीवर को एक सही समय पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो।
0: डॉक्टर साहब, हमारा खान पान काफ़ी बिगड़ गया है, तो शुरुआत से ही हम अपने खान पान को सुधार कर रखें, अच्छी खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें, बुरी आदतों से हम दूरियां बनाएं, अपने जीवन शैली को हम व्यवस्थित रखें, तो किस प्रकार कौन कौन चीज़ों का सेवन किया जाए और किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई जाए?
1: बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें होल ग्रेन्स पे डिपेंड होगा, आजकल मल्टी ग्रेन्स हम लोग खाते हैं तो ग्रेन्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें सीजनल सब्जी पे डिपेंडेंट होना होगा, हमें वैसे आर्टिफिशियल जो चीनी है या आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, तो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा, और जितनी भी घर से बनी हुई पदार्थें हैं उस पर डिपेंड होना होगा। और आज हमारे जो पंत प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसके लिए हमें अपने खान पान में तेल और घी की मात्रा थोड़ी कम करनी होगी। आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आने वाले समय में जो फैटी लीवर से लोग पैनिक हो रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमें मुख्यतः अपने घर की चीज़ों पर आश्रित होना होगा, मल्टी ग्रेन्स पर आश्रित होना होगा, तेल कम करना होगा, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें कम लेनी होगी, जो स्टार्च रिच फूड है उसे कम करना होगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा लीवर काफ़ी अच्छा रहेगा।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत फैटी लीवर कार्यदान विषय पर डॉक्टर ऋषि से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे श्री संजीव कुमार लाल। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: 1500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीत का कार्यक्रम और राग रंग, कलाकार होंगी परवीन सुल्ताना। सुगम संगीत का कार्यक्रम हम पेश करेंगे 7:45 पर। आज के कलाकार हैं चंदन दास। सुबह के 8 बजे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगी। कुछ फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह के 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू। 9:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह के 10 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 10:05 पर हिंदी में समाचार रिले होंगे। 10:10 पर हम मुंबई केंद्र से जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए। दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के जो 2 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 2:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 2:30 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 2:55 पर पुनः प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको रांची केंद्र लिए चलेंगे। 3 बजे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 4 बजे रांची केंद्र से पुनः आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 4:02 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। शाम के 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। पाँच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम विवरण हमारे स्टूडियो से। 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और युवाओं में नई सोच पर चर्चा होगी और सृष्टि सिंह की वार्ता आप सुनेंगे नदियों को साफ रखना हमारा कर्तव्य। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आज कल। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग का समय है 7:15। 7:45 पर आप सुनेंगे वार्ता मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर वार्ताकार होंगे चैतन्य शेखर। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरहदें। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। रात्रि 9 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सजता के तहत अभी आप सुन रहे थे चंदन दास को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: कैच द रेन, एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अंबिका ने हुरमुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल

0: फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: ಅಖಿಲಾಂಚಲ ನಿವಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜಗತ್ ಕೆ ನಾಥ್ ಕಹಿ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರೂಪ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉನ್ಕೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಬಲಭದ್ರ ಔರ್ ಬಹನ್ ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಭವ್ಯ ರಥೋ ಪರ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೋಕರ್ ಶ್ರೀ ಮಂದಿರ್ ಸೆ ಲಗಭಗ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ್ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಿಚಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಮಾನ್ಯತಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಮೌಸಿ ಕಾ ಘರ್ ಹೈ, ಜಹಾ ತೀನೋ ದೇವತಾ 9 ದಿನೋ ತಕ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಹತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ವೆ ದೋಬಾರಾ ಮಂದಿರ್ ಲೌಟತೆ ಹೈ. ರಥ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಶುರುವಾತ್ ಪಾಹಂಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್ ಸೆ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಭಜನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಔರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿ ರಿವಾಜೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ತೀನೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕೋ ರಥೋ ಪರ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಕರಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಲಾಖೋ ಶ್ರದ್ಧಾಲು ರಸ್ಸಿಯೋ ಸೆ ರಥ ಖಿಂಚತೆ ಹೈ, ಜಿಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಔರ್ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಗರ ಭ್ರಮಣ ಕೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
1: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है.
2: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंडा जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है. भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडिचा मंदिर जाएंगे. पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवविदालन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे. फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार.
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है.
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोनी के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया. रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं.
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं. दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा. इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी. आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा. मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे. भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा. मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया. एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी. 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है. 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं. आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए. अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ते के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जींद से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometre long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna Riverbank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
8: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
9: 448 crore rupees.
7: The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
8: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
7: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The cabinet also gave a nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made four major improvements in this new beta version. First, it does not have unnecessary captchas, pop-ups, flashing graphics or other distracting elements. Second, passengers can view seat availability across all classes. Third, it offers a faster checkout process, significantly reducing the number of steps required to book tickets. And fourth, the website will now save passengers' details, making repeat bookings easier. The website can be accessed at www.irctc.co.in/e-ticket. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on the 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India, ASI, in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. During the annual festival of Rath Yatra, Lord Jagannath and his two siblings give darshan to the public in the chariots and visit Gundicha temple, revered as the maternal aunt's abode of Lord Jagannath. Lakhs of devotees from across the country and abroad have converged to witness the divine procession of the Holy Trinity. Our correspondent has filed this report.
9: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath is the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri. An ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to their respective chariots. The ceremonial Chera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Deep atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhraja and Devi Dalana before devotees begin pulling them along the grand road amid reverberating chants of Jai Jagannath. Prakash Das, Akashwani News, Puri.
7: In Jharkhand, the annual Rath Yatra is being celebrated across the state today with traditional fervor and devotion. More from our correspondent.
4: Religious rituals began early this morning at the historic Jagannathpur temple in Dhurwa, Ranchi. After the deities are ceremonially placed on the chariot in the afternoon, the Rath Yatra will commence for Mausi Bari at 5:01 p.m. The district administration has deployed extensive security arrangements, including CCTV surveillance and a large number of security personnel across the fairgrounds. Meanwhile, in Hazaribagh, ISKCON will conduct the Rath Yatra on a 40-foot technologically advanced chariot developed by the support of IIT experts, while a cultural troupe from Kolkata will present special performances. In Koti, the local subdivisional administration reviewed security arrangements yesterday for the historic Rath Mela in the Bundu Panchpargana region. Special traffic diversions have also been put in place at major Jagannath temples across the state. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
7: The 149th Rath Yatra of Lord Jagannath also commenced today in Gujarat from the 400-year-old Jagannath Temple in the Jamalpur area of Ahmedabad amid tight security. Devotees in large numbers have thronged the temple premises to catch a glimpse of the deity. As per the century-old tradition, the annual Rath Yatra is held on the occasion of Ashar Shukla Dvitiya, the second day of the bright half of the Ashar month. More from our correspondent.
3: In Ahmedabad, the century-old tradition of annual Rath Yatra of Lord Jagannath is being celebrated today with immense religious fervor and gaiety on the auspicious occasion of Ashar Shukla Dvitiya. Earlier this morning, Union Home Minister Amit Shah participated in the Mangala Aarti at a historic Jagannath temple and sought blessings of the Almighty. Following this, Chief Minister Bhupendra Patel performed the symbolic Pahind Vidhi, cleansing of chariot route with a golden broom, and officially flagged off the procession. The majestic chariot of Lord Jagannath, brother Balbhadra and sister Subhadra are moving along the traditional 16-kilometer route accompanied by dozens of akhadas, bhajan mandalis and vibrant folk dance troupes. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
7: President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended greetings to countrymen on this sacred occasion of Jagannath Rath Yatra. President Murmu said, "This sacred union of the Lord and the devotees is an unparalleled and deeply emotional moment." Prime Minister Modi described the Rath Yatra as a radiant expression of India's timeless spiritual and cultural heritage. The Union Home Minister also said, "The world-famous Jagannath Rath Yatra is a symbol of unwavering faith, trust, and devotion." In Kerala, the hill shrine of Sabarimala will be open today for the monthly pujas. The temple will be open for darshan from this evening until the 21st of this month. Pilgrims will be allowed entry only through the virtual queue system to avoid overcrowding. The United States has said that it has launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. We have a report.
10: U.S. President Donald Trump is weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. Air defenses were activated in Tehran and residents were awoken by a loud explosion. It came after Iran claimed it has struck U.S. military targets in the region, including in Bahrain and Kuwait. On the other hand, U.S. military said it has disabled an empty oil tanker sailing toward Kerg Island, an economic lifeline for Iran. It marks the first vessel disabled since the U.S. naval blockade went back into effect. Meanwhile, Iranian Foreign Ministry spokesperson said Tehran has no plans for negotiations with the U.S. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: And now moving on to the world of sports. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atalanta Stadium in USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
11: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over U.S. sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as U.S. claims waves of strikes. As the world-famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to Anuja.
7: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. U.S. says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: मॉर्निंग न्यूज अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं हमारे स्टूडियो की कड़ी में 8:30 हो रहे हैं दोस्तों ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा। अनुष्ठान शुरू। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिम्स में एमबीबीएस की 70 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में अब 250 छात्रों का होगा नामांकन। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खनन नियमों में बदलाव का मसौदा किया तैयार। नए नियमों में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर किया गया फोकस। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची समेत आसपास के जिलों के तापमान में आई गिरावट और

0: 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। जैप 6 जमशेदपुर की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य आयोजन राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में हो रहा है और रथ यात्रा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं।
1: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। जिला प्रशासन ने पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरों और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहाँ की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। वहीं खूंटी के बुंडू पंच परगना क्षेत्र के ऐतिहासिक रथ मेले की सुरक्षा का जायजा कल स्थानीय अनुमंडल प्रशासन ने लिया। इसके साथ ही सरायकेला, दुमका और जमशेदपुर सहित राज्य के सभी प्रमुख जगन्नाथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए विशेष ट्रैफिक रूट डायवर्जन लागू किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने रिम्स में MBBS की 70 सीटें बढ़ा दी हैं। अब चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में 250 छात्रों का दाखिला लिया जाएगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग लंबे समय से रिम्स समेत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा था। विभाग ने आयोग और केंद्र सरकार को सभी जरूरी प्रस्ताव, अनुपालन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भेजे थे। खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS ने खनन और तेल क्षेत्र के नियमों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DGMS ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मूल रूप से नियमों में बदलाव का उद्देश्य खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही तकनीक और संचालन व्यवस्था को आधुनिक बनाना है।
2: देश में मेटल सेक्टर, कोयला खनन और तेल क्षेत्र के नियमों में DGMS 65 साल बाद अब बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ समितियां बनाई गई हैं, जिन्होंने प्रारंभिक प्रारूप तैयार कर लिया है। मूल रूप से नियमों में बदलाव का उद्देश्य खनन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत हर खदान में डिजिटल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली और ड्रोन सर्वेक्षण व निरीक्षण जैसी तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी कार्य पूरा होने के बावजूद 3 वर्षों तक संवेदक का भुगतान लंबित रखने पर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची मंडल के DRM KN सिंह ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान DRM ने अमृत भारत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित मुरी और पिस्का रेलवे स्टेशन के 17 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण पत्र दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में लिपिक पे पदों पर नियुक्ति को लेकर विधि और वित्त विभाग से सहमति नहीं लेने के कारण कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के नियुक्ति संबंधी अधियाचनाएं लौटा दी हैं। गौरतलब है कि किसी भी विभाग को नियुक्ति के लिए विधि और वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होती है, जिसके बाद ही आयोग को अनुशंसा भेजी जाती है। धनबाद के नरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड विवाद को लेकर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी ने कल अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। सांसद श्री महतो ने विधायक अरूप चटर्जी पर विकास कार्यों में बाधा डालने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
3: जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, हाथ जोड़कर निशा दे दी जनता से, जो रोका है या नहीं रोका है काम चालू होने को, उसके लोग भी कुछ बोलवाया गया कि हम लोग 8 साल 10 साल से मांग कर रहे हैं, तो भाई आप मांग कर रहे हैं इधर रोक भी रहे, ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा। जबरदस्ती सरकार के विरोध में जुलूस और प्रदर्शन किया।
0: वहीं दूसरी ओर भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने एलिवेटेड रोड परियोजना में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है।
4: वो अगर समझते हैं जो रोड पर हम लड़ के हम फैसला कर ले तो गलत है। एलिवेटेड के ठेकेदार SNP कॉन्ट्रैक्ट एंटरप्राइज लिए थे, उससे जीत ने लिया, जीत एंटरप्राइज से उससे ये लोग लिया, जबरन हम लोग काम नहीं करने देंगे, यहाँ के लोगों की देखरेख में काम होगी।
0: खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने रणनीति तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने पुलिस पदाधिकारियों को पुराने अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
5: 100 कांड प्रतिवेदित हुए तो 120% हम लोगों की तरफ से निष्पादन किया गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक पूरा रोस्टर तैयार किया है उन सभी अपराधियों का जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, मुख्यतः 17 CLA वाले जो एक्ट हैं उनके और जो NDPS वाले कांड हैं और जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उसमें जो भी क्रिमिनल्स रहे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है उनके बारे में सभी प्रकार की डिटेल्स उनके पास, उनका आज के समय में क्या रोजगार है, वो लोग कार्य योजना बनाई है जिससे कि हम लोग खूंटी से अपराध और कम करने की दिशा में अग्रतर हों।
0: बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी दी है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। जमशेदपुर के JAP 6 की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने खिलाड़ियों को अनुशासन, समर्पण और खेल भावना की सराहना की। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य की लंबित और प्रमुख सड़क परियोजनाओं को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के CM के निर्देश को प्रमुखता दी है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने रिम्स में MBBS की सीटें 180 से बढ़ाकर 250 करने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने अवैध राशन कार्डधारियों पर लिखा है CCL कर्मी और कार बंगले वाले खा रहे गरीबों का राशन। प्रभात खबर ने गुमला में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर लिखा है धक्का मारने पर भी नहीं चली एम्बुलेंस, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मां की गोद में बेटी ने दम तोड़ा। दैनिक जागरण ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की तकनीकी व्यवस्था पर बदलाव की तैयारी पर लिखा है झारखंड के सभी 9 इंजीनियरिंग कॉलेज अब कहलाएंगे BIT। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा अनुष्ठान शुरू। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिम्स में MBBS की 70 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। चालू शैक्षणिक सत्र से रिम्स में अब 250 छात्रों का होगा नामांकन। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खनन नियमों में बदलाव का मसौदा किया तैयार। नए नियमों में आधुनिकीकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर किया गया फोकस। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक मध्यम से भारी बारिश का जताया अनुमान। रांची समेत आसपास के जिलों के तापमान में आई गिरावट। और 22वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। JAP 6 जमशेदपुर की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

अभी आप सुन रहे थे चिराग फिल्म का गीत, और अब ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में से, और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी एवं उषा तिमोथिया की।

0: कारवां फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। इसके साथ ही आज के गीत गुंजन कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आप सभी को हमारा जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज के सुविचार से। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह था आज का सुविचार। ऐसे सुविचार आपके जीवन को बदल देते हैं अगर आप इन पर अमल करते हैं। और बात करें मौसम की, तो मौसम आज भी बेहद सुहावना है। धूप बिल्कुल नहीं है और तापमान 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंधी और छिटपुट बारिश की भी संभावना आज व्यक्त की जा रही है। कल यानी कि 17 जुलाई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और कल भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आप इस मौसम का आनंद उठाएं, क्योंकि मौसम बेहद खूबसूरत हो रखा है।

इस खूबसूरत मौसम का आप आनंद उठाएं और उसका स्वागत करें। और आज पूरा शहर स्वागत कर रहा है भगवान जगन्नाथ का, जिनकी आज निकलेगी भव्य रथ यात्रा। नेत्रदान अनुष्ठान के बाद भगवान जगन्नाथ के ने दिए दर्शन, आज निकलेगी भव्य यात्रा। रथ यात्रा महोत्सव की पूर्व संध्या पर बुधवार को धुरवा के जगन्नाथ मंदिर में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखा। शाम के करीब 5 बजे भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान विधि विधान के साथ प्रधान पुजारी के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन माता सुभद्रा ने विशेष श्रृंगार के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं में कोई आस्था की कमी नहीं दिखी। बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भगवान के दर्शन होते ही पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष नतमस्तक हुए और विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर में बज रहे घंटे, घड़ियाल, शंखनाद और धार्मिक भजनों ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। बारिश के फुहारों के बीच श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने लायक रही। कई श्रद्धालु भींगते हुए भी कतार में डटे रहे और भगवान की एक झलक पाने को बेताब रहे। तो आज इस रथ यात्रा में आप सभी शामिल हों और इस रथ यात्रा में शामिल होकर हमारे देश की सुख और समृद्धि की कामना करें। 2 माह में लंबित योजनाएं करें पूरी, नहीं तो होगी कार्रवाई, यह कहना है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री का। जियो टैगिंग, गुणवत्ता और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागीय अधिकारियों की ओर से पिछले 5 सालों की कार्य योजनाओं, निर्माधीन एवं पूर्ण हो चुके कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज एवं पुल पुलियों से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुति का गहन अवलोकन करते हुए अधिकारियों को कार्यों में विलंब एवं लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कार्य योजनाओं की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रमुख परियोजनाओं को आगामी 2 माह के भीतर पूरा किया जाए। लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन और विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रिम्स में अब 250 MBBS सीटें मिली मंजूरी, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था का हो रहा विस्तार। चालू सत्र से होगा 250 छात्रों का नामांकन, मेडिकल शिक्षा को मिलेगा बड़ा विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, झारखंड के लिए नई शुरुआत। झारखंड में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राजधानी रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में MBBS की सीटों को बढ़ाकर 250 करने के प्रस्ताव को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चालू शैक्षणिक क्षेत्र से रिम्स में 250 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रिम्स सहित राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS एवं PG सीटों में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत रहा। विभाग की ओर से केंद्र सरकार एवं NMC को आवश्यक प्रस्ताव, अनुपालन रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। झारखंड के डाकघर देश के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल, बचत बैंक सेवाओं में लक्ष्य का 107% किया हासिल। भारतीय डाक ने पहली बार तिमाही में 4,009 करोड़ रुपए। झारखंड के डाकघरों ने इस बार ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय डाक के पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक POSB कारोबार में झारखंड ने पहली बार तिमाही का 107% लक्ष्य हासिल कर देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डाक परिमंडलों में जगह बनाई है। अनाथ बच्चों के लिए प्रशासन बना सहारा, उपायुक्त के निर्देश पर एकौनी में 3 बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। अगले महीने से मिलेंगे 4,000 रुपए, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा की हुई व्यवस्था। हुसैनाबाद से खबर आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा एकौनी गांव के अनाथ बच्चों के लिए दिए गए निर्देशों पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अगले महीने से 3 बच्चों के बैंक खातों में प्रति माह 4,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त ने 16 मई को हुसैनाबाद प्रखंड की लोटनिया पंचायत अंतर्गत एकौनी गाँव पहुंचकर अनाथ बच्चों की स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया।
आशिक नगर विद्यालय में आईसीटी इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति, छात्रों में खुशी। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदगंज आशिक नगर में बुधवार को महेश राम ने आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में योगदान दिया। विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। दिव्यांगजनों को मिली नई रफ्तार, सीएसआर के तहत 10 लाभुकों को 3 पहिया वाहन दिए गए। आईडीबीआई बैंक की पहल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उपायुक्त ने सौंपी वाहन की चाबियां। आईडीबीआई बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर कार्यक्रम के तहत बुधवार को समाहरणालय परिसर में आयोजित समारोह में जिले के 10 दिव्यांगजनों को पेट्रोल चालित 3 पहिया वाहन वितरित किए गए। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने लाभुकों को वाहन की चाबियां सौंपकर आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सिद्धार्थ अनवर भी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आईडीबीआई बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन वाहनों से लाभुकों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें रोजगार एवं आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे। पलामू में भी चलेगा छात्रों की गूंज अभियान। रांची कार्यक्रम से लौटे कांग्रेस महासचिव ने बोला, छात्रों के अधिकार, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को मिलेगा मजबूत मंच। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अभिषेक तिवारी ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि रांची में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुची, वेनेसुएला के राष्ट्रीय प्रभारी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की गरिमामय उपस्थिति रही। उन्होंने बताया कि रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कार्यक्रम में झारखंड के संजय कुमार राजा के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं और छात्रों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का मंच बना है।

रंका में पहली बार हुआ राजकुमारी विशाखा सिंह स्मृति प्रतिभा सम्मान समारोह। शिक्षा, प्रतिभा और प्रेरणा को मिला मंच, हर साल आयोजन का लिया गया संकल्प। रंका अनुमंडल में पहली बार राजकुमारी विशाखा सिंह स्मृति प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षा, प्रतिभा और प्रेरणा को समर्पित इस समारोह में विभिन्न विद्यालयों के 120 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज निकलेगी रथ यात्रा, श्रद्धालु होंगे भाव विभोर। खबर लोहरदगा से आ रही है। लोहरदगा ठाकुरबाड़ी मंदिर में परंपरागत विधि विधान से नेत्रदान अनुष्ठान संपन्न हुआ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महापर्व की पूर्व संध्या पर लोहरदगा शहर में धार्मिक आस्था, परंपरा और उल्लास का वातावरण रहा। गुदरी बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर सहित अन्य ठाकुरबाड़ी मंदिरों में बुधवार को पारंपरिक श्रद्धा एवं विधि पूर्वक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के विग्रहों का नेत्रदान अनुष्ठान संपन्न हुआ। भगवान के नेत्र स्थापन के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आरती, भजन और प्रसाद में भाग लिया। इन खबरों के बाद अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और देखते हैं आज क्या है कुछ खास। 16 जुलाई का इतिहास भारत और दुनिया के लिए बहुत ही खास है। आज के दिन 1856 में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। इसके अलावा 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को लेकर अपोलो 11 मिशन चांद के लिए रवाना हुआ था। 1856 में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, इससे विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिला। 1945 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी हुआ। इसी के साथ दुनिया में परमाणु युग की शुरुआत हुई। 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया। इसी मिशन ने पहली बार इंसानों को चांद पर पहुंचाया। 2015 में आज के दिन अमेरिका की एक अदालत ने द डार्क नाइट राइजेज फिल्म देखने वालों पर गोली चलाने वाले जेम्स होम्स को दोषी करार किया था। 1909 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के लिए लोग जानते हैं। 1983 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है आज, विश्व सर्प दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे। सांपों के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और 16 जुलाई इन्हीं चीज़ों के लिए विशेष मायने रखती है। और आज के इतिहास में इस तारीख में यही विशेषताएं दर्ज हैं। तो यह थी आज के इतिहास की बातें। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने

0: प्रेस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
0: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
0: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
0: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओ, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
0: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिनी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
0: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
0: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
0: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
0: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
0: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
0: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
0: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
0: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
0: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन।
2: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
3: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु

0: परिवर्तन में बहुत अंतर है
1: जी।
0: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है
1: जी। लेकिन वो कैसे?
0: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु
2: जी।
0: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है
2: जी।
0: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड
2: जी।
0: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी
1: जी।
2: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है
1: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है
2: जी।
1: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
1: जी।
2: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है
2: जी
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
1: जी।
0: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे
2: जी। जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
2: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर यह बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
2: जी। और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
0: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
0: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
2: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं जी। तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
0: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है
2: जी।
0: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
2: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा
2: जी।
0: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल।
0: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
2: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा
1: जी।
2: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम
1: जी।
2: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा
1: जी। इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
0: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें
1: जी। तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
2: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
0: बिल्कुल।
2: और यदि पेड़ काटे भी जाएं, तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें
2: जी।
0: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल। तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
0: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है
2: जी।
1: बिल्कुल।
2: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा
1: जी।
2: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है
2: जी।
0: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का
2: जी।
1: कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: अपने से किताबें निकालो, चलो चलो अपना अपना पार्ट निकालो।
2: जी
1: तुम्हें भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो। हाँ इधर मेरी तरफ देखिए। हाँ शाबाश, अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए?
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरु जी, पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी,
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी, पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, इसके पीछे हो जाओ।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: एकम पांच, पांच दूनी दस।
6: नमस्ते नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
6: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
7: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
6: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी, उसी से पानी लाते हैं।
6: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
6: हाँ हाँ, ये भी ठीक है।
8: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
6: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी,
6: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर जी।
6: लिखो फिर, सब लिखो।
4: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
9: दीदी, बोलो मालती।
10: दीदी, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
9: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
10: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
9: ठीक।
10: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
9: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
10: जी।
9: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
10: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
9: हाँ।
4: अब जिस शब्द पर अटको, शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
11: नमस्ते दीदी।
12: नमस्ते दीदी।
13: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
14: दीदी ये,
13: अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण कहाँ से लाए तुम ये फूल?
8: दीदी ये फूल प्रवीण अपने एक बगीचे से लाया है।
13: अच्छा
8: दीदी इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
13: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
14: गुलाब।
13: गुलाब बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
11: दीदी मैं बताऊंगी।
13: नहीं नहीं नहीं सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
14: गुलाब।
13: गेंदा।
14: चमेली। और चमेली।
13: चमेली।
14: सूरजमुखी।
13: सूरजमुखी शाबाश।
4: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
13: देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
4: जी
13: मेरे छात्र पहली दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं

0: के पाठ कैसे तैयार करती हैं?
1: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
0: जी
1: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं।
0: जी
1: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं।

0: लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है और सुबह की सभा भी यहीं समाप्त होती है। बाकी के कार्यक्रमों के लिए आप बने रहें। अभी कुछ ही पलों में सुबह के 10 बजे हम दिल्ली केंद्र से आपको सुनाएंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद जुड़ेंगे आप मुंबई केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आइए समाचारों के लिए दिल्ली केंद्र चलते हैं।

0: हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसकी आसान प्रतिक्रिया पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सी पी

0: कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings, elder brother Lord Balbhadra and younger sister Devi Subhadra, will begin today at Puri in Odisha. Our correspondent has filed this report.
2: Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. With the first rays of dawn illuminating the sacred Badadanda of Puri, an ocean of devotion is enveloping the pilgrim city as Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan are embarking on their annual sojourn to the Sri Gundicha temple, revered as the maternal aunt abode of the sibling deities. Despite heavy rain lashing Puri since early morning, lakhs of devotees are remaining undeterred, patiently and anxiously waiting ceremonial Pahandi Vijay of the Holy Trinity to their respective chariots. The ceremonial Chhera Pahara ritual will thereafter be performed by Gajapati Maharaja of Puri Divya Singh Dev atop the three magnificently adorned chariots Nandi Ghosa, Taladhwaja and Devi Dalana before devotees begin pulling them along the grand road amid reverberating chants of Jai Jagannath. Prakash Das, Akashwani News, Puri.
1: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to people in India and abroad on the sacred occasion of Jagannath Rath Yatra. In a social media post, the President said that it is popular belief that during the grand procession, Mahaprabhu Sri Jagannath along with Chakra Raj Sudarshan, elder brother Balbhadra and sister Subhadra comes out to meet the devotees. Mr. Radhakrishnan said that the sacred Rath Yatra reflects the values of faith, devotion, equality and collective harmony, bringing people together beyond all differences. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings to the people on the sacred occasion of Rath Yatra. In a social media post, Mr. Modi described the Rath Yatra as a radiant expression of India's timeless spiritual and cultural heritage. The Prime Minister prayed that Mahaprabhu Jagannath bless everyone with good health, happiness and prosperity. He also expressed the hope that the Lord would give strength to all in their endeavors and further deepen the spirit of togetherness in society. The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel as part of its latest fortnightly review of fuel export taxes. Under the revised rates, the export duty on diesel has been increased to 15.5 rupees per litre, while the duty on aviation turbine fuel exports has been raised to 14.5 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been reduced to 2.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from today. There is, however, no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made four major improvements in this new beta version. US says it has launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. US military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the US military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. Air defenses were activated in Tehran early this morning and residents were awoken by a loud explosion. It came after Iran claimed it has struck U.S. military strikes in the region, including in Bahrain and Kuwait. In men's cricket, second one-day international of three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in U.S. to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute, and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. And that is the end of this news bulletin.
3: कोई हमने एक पात्र चयन किया जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन तो अर्जुन को पात्र बनाकर कि जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं तो उस तरह का हम किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें दोनों चेहरे तो एक से
4: जी, जी जी
3: कई बार ये स्थितियां होती
4: बिल्कुल
3: है।
4: तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं रेडियो सुनते हैं तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं
3: चलिए ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना ये सुना जाए क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है
4: जी अमर प्रेम फिल्म का गाना
3: अमर प्रेम फिल्म का गाना है किशोर कुमार की आवाज है आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं तो क्यों ना हम ये गाना
4: सुनते हैं यही गीत

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे, तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा
1: मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ। मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले थे।
0: तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम, वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे। पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता
0: था, कौन पहले पढ़ेगा।
1: तो ये जमाना था।
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान तो इंतजार होता था
1: धर्मयोग,
0: कौन पहले पढ़ेगा,
1: धर्मयोग जी, जी। और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता।
0: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में
1: रुचि में था। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल
0: थे।
1: जी हाँ, तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से बी किया, फिर उसके बाद बी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCTA भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम, तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
0: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती है?
1: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा थी, खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप

0: रूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी इसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं। भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई जो हमने फैराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो वो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: कौन
0: जरूर।
1: सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर,
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध
0: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो ये
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी,
1: जी।
0: आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: क्योंकि जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ।
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ।
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है?
1: ममता जी,
0: तो ऐसी
1: बहुत
0: कोई बात है
1: अच्छा
0: तो
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ।
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती रहे, ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई। तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
0: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हाँ, मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते।
0: जी जी।
1: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
0: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं
0: जी।
1: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये
0: अनाड़ी फिल्म का गाना,
1: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959।
0: अच्छा।
1: 28 जुलाई 59।
0: तो सुनते हैं ये
1: जी,
0: गाना
1: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए।
1: जरूर,
0: लिखते समय
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं, क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ, छोटी सी कविता है। शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है, ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाद जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाद जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा मैं आगाद हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है अगाध जी, आपने आज आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। अगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
0: क्या बात है।
1: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
0: जी, क्या बात है, बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
0: जी, सौतन फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी।
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी।
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के यथार्थ नायक जो जिस ढंग का जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होगा।
0: जी जी।
1: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
0: क्या बात है,
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
0: से इंतजार होता
1: जी हाँ
0: था।
1: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया और स्वसंपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी।
0: जी,
1: जब
0: जी,
1: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, आप सब कुछ
0: टर्न हो के जी हाँ, एक समय था,
1: एक समय
0: बहुत
1: जी
0: हाँ, हुआ था जी।
1: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी जी।
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है।
0: एक पुल का काम करते
1: पुल का काम
0: है,
1: करता कि है हाँ।
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है तो निश्चित रूप से
1: नहीं उससे परिष्कार भी
0: पार जा सकते हैं।
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है।
0: तो क्या प्रतिक्रिया देती है? अच्छी बुरी
1: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में सा जुटा हुआ है, सबका हित
0: जी।
1: तो जो कुछ हम जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहे ना रहे साहित्य रहेगा।
0: जी बिल्कुल, किताब रहेगी,
1: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी।
0: एक उनकी बाकायदा दुनिया
1: हाँ,
0: है और
1: एक,
0: बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
1: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
0: जी जी।
1: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
0: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की तो आप खुद विदेशों में गए हैं, आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं, तो प्रवासी साहित्यकारों उनकी दुनिया कैसी है,
1: उनकी
0: फायदे नुकसान?
1: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
0: जी।
1: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं।
0: अभी मैं विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
1: जी हाँ,
0: नाटक भी था
1: जी।
0: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
1: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ, सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है, मेरी रचना प्रक्रिया ये है। और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है। और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
0: जी, तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक?
1: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी, कितनी मेहनत तो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए अपना सर्व, मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराती
0: है, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
1: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती है, तो ये एक को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
0: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
1: उनके लिए तो जरूर लिखी है मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
0: क्या बात है।
1: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए

0: रोटी तो अच्छा लगता है, ये भाव है
1: जी,
0: है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है।
1: वाह।
0: कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन अच्छा लगता है।
1: वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं, तो
1: जी
0: ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक जगह
0: मंचन हुआ,
1: हाँ मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर,
1: गीत अमर कर दो। और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी।
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं तो उसका सीधा असर इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं। तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं। तो मेरी झलकियां मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए, और इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने सारे साहित्यकारों को, तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है,
1: विस्मृत हो रही है, रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूं।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कही, साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना, और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। कार्यक्रम रंग तरंग बस कुछ ही पलों में।

0: रंग तरंग
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

मोहम्मद रफी और साथियों को आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी असल में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर को अभी आपने सुना।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे थे बेदर्दी से प्यार का इस एल्बम का गीत। जुबिन नौटियाल की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल थे, मीत ब्रदर्स का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
6: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म बवंडर का ये गीत आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में, हरी राम आचार्य की रचना थी, विश्व मोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज में फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे। बशर नवाज की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी। ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तर्जर आवाज थी भूपेन हजारिका की गुलजार की रचना आप सुन रहे थे फिल्म रुदाली से। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज़।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म पुष्पांजलि से ये गीत आप सुन रहे थे। रंग तरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्स कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के

0: निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आनंद बख्शी की रचना, लता मंगेशकर, इला अरुण की आवाजें, फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओं, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरि की। फिल्म मोहरा, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत बिजू शाह का।

0: किया। स्टेट की भी
1: कारण जो काफी तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है जिनका।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों

0: पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
2: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
1: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the fifth meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all countries. He said there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions.
3: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy, and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions.
1: The Supreme Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for the early or premature release of prisoners who are of advanced age or are terminally ill. The court ordered that the policy be framed and notified within 3 months to ensure a uniform mechanism for considering such cases across the country. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued the directions by invoking its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution while deciding a public interest litigation plea seeking a humane and uniform framework for the release of elderly and seriously ill prisoners. The Delhi High Court today directed authorities to monitor the health of activist Sonam Wangchuk on a daily basis, stressing that life is precious. Mr. Wangchuk is on an indefinite fast at Jantar Mantar in New Delhi. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia asserted that Mr. Wangchuk's condition should be checked regularly by government doctors. Solicitor General Tushar Mehta, who appeared for the centre as well as the Delhi government, submitted that life of every individual is precious and there was no objection to undertaking Wangchuk's regular medical check-up. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the India-European Union Free Trade Agreement can open real doors for Indian industry and deliver tangible outcomes for Indian businesses, MSMEs and people. In a social media post, Mr. Goyal informed that he interacted with the Indian business delegation comprising members of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Confederation of Indian Industry, ASSOCHAM and other regional associations in Brussels, Belgium. The Indian Meteorological Department has issued orange alert for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal and Odisha today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Uttarakhand for the day. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain on Sunday night. And with that, we end this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार.
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव शुरू. रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से शाम 5 बजे निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई. राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ करेगी MOU. विश्व स्तरीय नर्सिंग शिक्षा और मेडिकल रिसर्च का मिलेगा अवसर. रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण किया जारी. पथ निर्माण विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी जिलों को जिला स्तर पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का तत्काल गठन करने का दिया निर्देश. और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश के मिल रहे संकेत. और अब समाचार विस्तार से. राज्यभर में आज भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है. रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से शाम 5 बजे भगवान और उनके भाई बहन की रथ यात्रा शुरू होगी. जामताड़ा में श्री श्री राधा माधव मंदिर के रथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है. राष्ट्रपति ने कहा कि रथ यात्रा में भगवान और भक्तों का पवित्र मिलन अद्वितीय और भावुक पल होता है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा को भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने भारत और दुनिया को प्रेरित किया है. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पावन अवसर पर बधाई दी और कहा कि यह त्योहार हम सभी को सेवा, समरसता, आस्था और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा. रथ यात्रा महोत्सव को लेकर रांची समेत विभिन्न जिलों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. राजधानी रांची के धुरवा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है. वहीं जमशेदपुर के SSP ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारी की गई है. राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ MOU करेगी. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि इस पहल से झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और अन्य मेधावी छात्र छात्राओं को अमेरिका में विश्व स्तरीय नर्सिंग शिक्षा, मेडिकल रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और एडवांस ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा. रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है. IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं. पेश है एक रिपोर्ट.
6: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं. दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं. तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा. मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है. मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। आईआरसीटीसी वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष गीता बलमुचू को ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओएमडीसी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर

0: भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। आम आदमी पार्टी की बोकारो जिला इकाई ने उपायुक्त अजय नाथ झा और सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर सदर अस्पताल की अव्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को 10 वर्षीय बच्ची की कथित रूप से समय पर उपचार नहीं मिलने से हुई मौत के संबंध में भी जानकारी दी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की गयी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पथ निर्माण विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जिला स्तर पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का तत्काल गठन करने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि जिन जिलों से राष्ट्रीय उच्च पथ गुजरते हैं वहां अविलंब टास्क फोर्स का गठन कर विभाग को जानकारी दें। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उच्च पथ पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाना और दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करना है। जमशेदपुर स्थित XLRI के रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर एक्साइट ने नाबार्ड के सहयोग से अपने पहले ग्रामीण इंक्यूबेशन बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। एक्साइट के सीईओ रवीश वसन ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीयों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से 3 दिवसीय उन्नति राखी मेला का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि ऐसे आयोजन महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करते हैं।
1: 3 दिवसीय उन्नति मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पे कम से कम 52 स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ सभी स्टॉल्स में आप देखेंगे कि सभी महिला उद्यमी हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राखी भी आने वाली है, तो आपको राखी के स्टॉल्स दिखेंगे और बहुत सुंदर सुंदर राखी आई है। मैं जब भी ये मेला लगता है तो मैं यहाँ से शॉपिंग जरूर करती हूँ।
0: गिरिडीह जिले में बगोदर थाना पुलिस ने कल भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि शराब को बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था।
2: हमें भारी मात्रा में शराब की खेप जो है प्राप्त हुई है, जिसे हमने जब्त किया है। जब्त शराब करीब करीब 618 पेटी है, जिसका अनुमानित मार्केट वैल्यू जो होगा वो 35 लाख के आसपास है। हमने जो है ट्रक के चालक, ट्रक के मालिक और अज्ञात जो तस्कर है, इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस संदर्भ में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक गिरकर 24,154 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3-4 दिन अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से अच्छी बारिश के संकेत हैं।
3: अभी जो स्थिति बन रही है उत्तरी बंगाल की खाड़ी, उससे सटे हुए जो पश्चिमी बांग्लादेश तट है, तो उसके पास में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का कल से संभावना जताया जा रहा है और जिस कारण से उम्मीद है कि कुछ झारखंड में भी हम लोगों को अच्छी बारिश अगले जो 3-4 दिन है उसमें देखने को मिल सकती है।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव शुरू। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से शाम 5 बजे निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ करेगी एमओयू। विश्व स्तरीय नर्सिंग शिक्षा और मेडिकल रिसर्च का मिलेगा अवसर। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट का नया संस्करण किया जारी। पथ निर्माण विभाग ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी जिलों को जिला स्तर पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का तत्काल गठन करने का दिया निर्देश। और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश के मिल रहे संकेत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नजारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोता, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है, और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ। और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक हैं या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काट कर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, उन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी। बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे, और याद तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से, बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठकर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था, तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थी, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं, और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी, घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियां चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

अर्जुन की तर्ज थी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज में, इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा, मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ, बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे, उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से, और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ्य है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियां जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियां कैसी शांत पड़ी हुई हैं, और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियां टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्जाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया और सीढ़ी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें जरूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

0: आई।
1: फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो जरूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियां ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थी, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन साहब सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं। इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर कर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता है जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती है कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

शुदा कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहां किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियां, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मजा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसीन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियां। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती है कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे, कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: Development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. More from our correspondent.
1: The launch of first hydrogen-powered train marks a significant milestone in the country's transition towards clean and sustainable mobility in the railway sector. India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger train developed so far. It is powered by a 3,200-horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train will operate at a maximum speed of 75 km per hour on Jind-Sonipat section. The use of green hydrogen also reduces dependence on electricity generated from fossil fuel-based thermopower plants, supporting India's transition to sustainable transport. With its introduction, India will join the select group of countries such as Germany, Japan, China and the United States that are exploring the use of hydrogen for cleaner rail transportation. With Deependra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said BRICS countries will sign a memorandum of understanding in Bengaluru to collaborate in the area of standardization. He was speaking to media after addressing a meeting of heads of BRICS national standardization bodies. The minister said this will promote the information sharing, exchange of best practices, technical collaboration and capacity building among the BRICS member countries.
2: One of the most significant outcome we expect from this meeting is the finalization and signing of the BRICS MOUs on cooperation in the field of standardization. From last many years, this finalization of MOU was pending. This MOU will mutually benefit a win-win situation. Now we have finalized the MOU with all BRIC countries and today it will be signed.
0: This is the fifth BRICS Heads of National Standardization Bodies meeting being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
4: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
5: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
4: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
3: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
4: There is an urgent need for us.
5: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
3: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
6: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया, और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने, यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
3: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
6: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
3: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देशभर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
7: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
8: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीएआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
9: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती नहीं।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: वो भी नहीं है कि बनाई तर्ज पर इसे गया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: गंगा की लहरें सुन का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। राज्य भर में आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इसके साथ ही जमशेदपुर और बोकारो समेत तमाम जिलों में भी रथ यात्रा को लेकर भव्य मेलों की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष रूट एडवाइजरी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर राज्यवासियों को सुख, समृद्धि और शांति की शुभकामनाएं दी हैं। उधर गुमला के करौंदी जगन्नाथपुर मंदिर में आज रथ यात्रा पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन पर सुख शांति की शुभकामनाएं दी हैं। मेले में खिलौनों, मिठाइयों की दुकानें और झूले भी लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र हैं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है।
1: बहुत लंबी लाइन थे और लाइन के द्वारा ही लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर पाए हैं। उसमें हम भी अपने परिवार के साथ आए थे और उनका दर्शन करने का सौभाग्य हमारे परिवार को भी प्राप्त हुआ। और आशा करता हूं कि इस जगन्नाथ स्वामी के जो भी दर्शन करने आए हैं भक्तजन, उनको भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करे।
0: हजारीबाग में जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर मेरी धरती मेरी जिम्मेवारी समूह ने 51 बाल तरु रोपण अभियान चलाया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर मनोज कुमार के नेतृत्व में यह समूह पिछले 2 दशकों में 10,000 से अधिक पौधे लगाकर उनकी रक्षा कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम आह्वान से प्रेरित इस कार्यक्रम में DFO मौन प्रकाश ने भी खुद पौधा लगाकर पर्यावरण प्रेमियों का हौसला बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE द्वारा 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा लागू करने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस BV नागरत्न और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू न की जाए, क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव बढ़ता है। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया है कि यदि नई भाषा सिखानी है तो इसे 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से सामंजस्य बिठा सकें। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। नई दिल्ली के द्वारका स्थित IIIDM सभागार में कल चुनाव आयोग एक राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के मीडियाकर्मी शामिल होंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव तकनीक, कानूनी विषयों और काउंटिंग प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कोडरमा में गौशाला समिति ने आत्मनिर्भरता का सफल मॉडल तैयार किया है। यहां परिसर के गोबर से पूरी तरह प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनाई जा रही है। समिति के अध्यक्ष महेश दारुका और सदस्य अरुण मोदी के अनुसार इस पहल से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि इससे होने वाली आमदनी से गोवंश की देखभाल भी हो सकेगी।
2: जैविक खाद तो आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत है। रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा, उससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है। साग सब्जी कहें या अन्य अनाज कहें, उसमें भी रासायनिक तत्व जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोडरमा गौशाला में भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में गौवंश हैं, उसका हम लोग यहाँ जैविक खाद का उत्पादन शुरू किए हैं।
0: लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रांची लातेहार मुख्य मार्ग पर शिव टोली के पास एक अनियंत्रित मिनी ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। DSP संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राज्य भर में मानसून

एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आज और कल रांची, खूंटी, रामगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है।
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता हैं वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
2: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
1: हाँ वही तो कहा ना,
2: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके, सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
2: बिल्कुल,
1: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है, तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
2: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
1: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती
2: है। प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे हो जाएगा।
1: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीतने पसंद करते हैं।
2: महंगी आती है वो, जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
1: बिल्कुल
2: कुछ अलग ही।
1: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है, इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
2: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
1: जी।
2: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
1: दिमागी कसरत
2: भूल गई थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने, अब ऐसी बात हमने कुछ लाइंस बोल दी अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या कौन सी चीज छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की अगर है क्या थी?

0: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना, तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं? बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है, हमारे साथ
1: और
0: जरूर
1: सिर्फ
0: साझा
1: बच्चों
0: करें।
1: के ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते
0: जी
1: रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो
0: जी
1: इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है,
0: हाँ,
1: तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा।
0: इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों का।
1: वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है,
0: जी
1: तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो
1: अच्छा
0: प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको पुनः महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे

0: हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले।
1: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पुरी से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के आंखों देखा हाल का दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है। जब हम पहला चरण पूरा करके ब्रेक में गए थे, तब जगन्नाथ जी, उनकी पहंडी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, वो रथ पर आसीन नहीं हुए थे। लेकिन इस बीच जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बाद तीनों रथों में जो पार्श्व देवी देवता उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरि गोवर्धनधारी, पांडु नरसिंह, लक्ष्मण, अंगद, नरसिम्हा, कार्तिकेय, नटराज, नृत्यरत गणेश आदि ये देव, तथा माँ बिमला, वनदुर्गा, वराही, चामुंडा, भुवनेश्वरी, हरचंडी, जयदुर्गा, सरमंगला, उग्रतारा आदि देवियों को भी सहायक देवी देवता के रूप में रथों पर विराजमान कराया जाता है। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस तरह पहंडी का क्रम संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद विधि अनुसार जो परंपरा रही है सदियों की, पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती वो अपनी सेवा देने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वो पधारे हैं। एक के बाद एक तीनों रथों पर वो भगवान की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान से समूचे जगत के लिए कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्रम अभी चल रहा है। उनका जो ये सेवा है ये पूरी हो जाने के बाद फिर वहाँ से आज्ञामाल आएगी और गजपति महाराजा के पास संदेश लेकर कि आपका अब समय हो चुका है, इसके लिए अभी समय है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं, भीड़ इतनी है। इस बीच किसी किसी मूर्छित श्रद्धालु को स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सहायता करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए पास ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद है, अग्निशम विभाग वो लोग भी मौजूद हैं और पुलिस, आरपीएफ और ये सारी सशस्त्र सेनाएं ये भी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। सब कुछ सकुशल चल रहा है। घंट ध्वनि, जय घोष, जय जगन्नाथ, हरि बोल की गूंज के बीच ये वातावरण एक मानो एक अद्भुत लहर उठ चुकी है और मेरे सामने तीनों रथ जो सुसज्जित हैं अभी गजपति महाराजा के पास संदेशा आएगा। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथयात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथ पुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी, आप लोगों ने जैसे सुना, अंजलि जी बहुत ही भावुक हो गई है। ये समय ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े चक्राकार नयन को देखकर कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है। वो अपने आप को भुला देता है। वो यही देख रहा है कि वो दुनिया में सिर्फ वो अकेला है और उसके सामने उसके आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, आसपास कोई और नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के मिलन का दृश्य बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। आप पहली बार आई हैं रथ यात्रा में?
2: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
1: इससे पहले आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आई?
2: नहीं, मैंने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।
1: तो देखिए, ये अंजलि जी का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आज के इस अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के तिथि में उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें दर्शन दिया। और जैसा कि अंजलि जी ने वर्णन किया, उनके पास शब्द की कमी पड़ रही है, वो अपने भाव प्रकट करने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी, आपका जीवन सुखमय हो, जगन्नाथ जी आप पर यही आशीर्वाद करें। धन्यवाद,
2: जय जगन्नाथ।
1: तो देखा आपने, ये एक भक्त के मन की भावना थी, उन्हें शब्दों की कमी पड़ रही थी, वो यहाँ आकर जगन्नाथ पुरी में पहुंचकर कैसे अपने आप को भुला देती हैं, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर कैसे अपने आप को धन्य मानती हैं। तो अब मेरे सामने तीनों रथ सुसज्जित हैं, जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं, शंकराचार्य जी अपने भगवान के दर्शन कर सभी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, समूचे विश्व के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से।
3: थैंक यू मजीथिया जी। एक्चुअली दिस इज द आफ्टरनून सेशन ऑफ आवर कमेंट्री, लाइव कमेंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश। मजीथिया जी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ द थ्री कार्स आर ऑलरेडी रेडी, दे आर इन रेडी पोजिशन, दो ऑल थ्री ऑफ देम आर एब्सोल्युटली wet to the skin, as you say, but this has had no deterring effect on the assembly. The crowd is as eager to participate in the Rath Yatra as they were early in the morning. But morning or afternoon, the rains continue unabated, but this has not been able to do any dent to the enthusiasm of the crowd, of the substantial crowd which has assembled here to see the annual Rath Yatra of the Lord of Lords, that is Jagannath. So as I was telling you, this time special precaution has been taken from the side of the government to prepare everything in such a way so that there is no untoward incident, because last year there was one such untoward incident for which the government was a little maligned, and this time they have taken special care. And the services provided also, they include some of it Majithya ji has already talked about. Fire brigade is there, health services like Red Cross and ambulance services are always available. In fact, the moment there is a casualty, that there's somebody falls down because of extreme heat, but there is no heat today, it is only rains. So in case anyone loses consciousness, there is an ambulance which is allowed to pass through the crowd in such a beautiful way, so that there is nothing that comes in the way of the ambulance, and the patient is immediately taken care of. And the sanitation part is also taken up care of, and police has taken special care this year. About 220 platoons of police personnel have been deployed for the Puri Rath Yatra this year. About 12,000 security personnel including Odisha police.

0: होम गार्ड्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF लाइक BSF एंड CRPF आर ऑलरेडी देयर एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स ऑल्सो लाइक एलिट यूनिट्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG एंड कमांडोज एंड रैपिड एक्शन फोर्सेस RAF दैट इज दे आर ऑल्सो प्रेस्ट इन टू सर्विस दे आर ऑन ड्यूटी एंड वेन एवर रिक्वायर्ड देयर हेल्प कैन बी शॉर्ट आफ्टर एंड एब्सोल्युटली अबाउट अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 40 प्लाटून्स ऑफ द ओवरऑल फोर्स आर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ व्हीकल फ्लो इन पुरी. लेट मी टेल यू हियर दैट मैनेजिंग द ट्रैफिक इज अ बिग हेडेक फॉर द गवर्नमेंट ऑल द टाइम, बट दिस टाइम गवर्नमेंट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड. द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन इन हुज ऑफिस वी आर डूइंग कमेंट्री वर्क, दे आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट द रथ यात्रा दिस ईयर इन एज कॉम्पिटेंट अ वे एज दे कैन. As I was telling you, the study of the Jagannath cult and its origin and fallout do tell us that the name Jagannatha came to be in common use around 14th century AD. And the Madala Panji, that is perhaps the most ancient document on Sri Mandir, whose date is about 17th century AD, that would trace the maker of the Jagannath temple to be Jajati I, that is the first Jajati. But there is a classic text on Jagannath cult which is mentioned in the Purushottama Khetra Mahatmya. They would like to credit the making of the mandir to Indradyumna, who is named so because he is a king powerful like Indra, or the king of the gods. He was a Somavamsi ruler and ruler of Avanti. That's why he is taken to be a mythical king, and he is taken to be the chief architect of the temple, though there existed another temple earlier. And this earlier temple, a later day emperor called Galamadav,
1: jo Shankaracharya Maharaj ki niti hai, वो संपन्न हुई है, इसके बाद संपन्न होने को जा रही है. फिलहाल शंकराचार्य महाराज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान हैं, वहां पूजा आरती कर रहे हैं. थोड़ी देर में वो यहां से अपना कार्य संपन्न कर विदाई लेंगे, उसके पश्चात गजपति महाराजा यहां आएंगे अपनी सेवा प्रदान करने के लिए. पुरी के गजपति महाराजा भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इसलिए रथों पर छेरा पहरा की नीति संपन्न करने की जो परंपरा है, इसका जो हक है ये उन्हें प्राप्त है. छेरा पहरा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा. छेरा और पहरा ये दो शब्दों का मिश्रण है. छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल, और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना. तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा. तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे, बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा. परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है. प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं. ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है. इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं, और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके, फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं. यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है. आगे चलकर भी यही प्रक्रिया

0: they are in Jananas, they could include complaint, demand, love, ecstasy, and even anger. There is a beautiful poem written by Kavi Surya Baladeva Ratha. Its name as Sarpa Janana, which is what I read out just now to you. And it means that because he is hurt, he is forced to berate the Lord, otherwise he did not dare do so. So the Lord should forgive him because he did not mean any offense. And the devotee, singer, songwriter strategically hides her or his prayer through the Janana, through a peculiarly playful combination of lament and complaint. This is what we call Oli in Odia. And this translates in English to urge in English. This is somewhat comparable to Rubayat of Omar Khayyam, where he also is cursing God, which only goes on to prove how much he loves his own God. And the unrelenting demands of the powerless children before their parents is often expressed through these ollies. But then bhajans do lack the passionate intensity of Jananas. In Jananas, gods are variously addressed as Krupa Sindhu, that is Ocean of Mercy, Deenabandhu, Friend of the Destitute, Artatrana, Remover of Pain, or Patita Pavana, Rescuer of the Fallen. Fallen doesn't mean, as I told you, that it's a sinner, but anybody who's interested in redeeming himself or herself can come in the category of Patita. And this element of Oli is absent in bhajans, which occupies a special place and a central place in the Jananas. The famous Janana, one such famous Janana is Ahe Neela Saila, courtesy Salabega, who was a Muslim, but he was a very fond devotee of the Lord. Or there is another Janana by Akshay Mahanti, another popular singer from Odisha, Ekato Bhakata Jivana. These, and there are so many, for the precision of time, I am not able to recapitulate many of them. But preponderance of devotional literature in pre-colonial Odisha, as researcher Manmohan Chakraborty highlights, and later on other historians have also agreed with him on this. And the first famous epithet which was given to a singer of Janana in Odisha was Banikantha. It was conferred on Nimai Charan Harichandan. More about this later. I would like Majithia ji to continue the commentary in Hindi and talk to you about the progress of the Rath Jatra.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं देख पा रहा हूं बलभद्र जी के तालध्वज रथ पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करने में लगे हैं. तालध्वज रथ के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद, वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर. उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने की मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे. इसमें अभी समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा. जो यहां पूरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, या जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे। जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चूड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे, अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा। अब आप सोच रहे होंगे ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी। आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा, उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है। 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे। रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे। इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है। जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पुरी आए हुए थे। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पुरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया। आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएं बहुत हैं, हम कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो वहां रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे। हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पूरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा। भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
2: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में।
3: You are listening to the live broadcast of the Rath Yatra being celebrated at Pavan Kshetra Puri, Odisha. Our commentators were Shri Mohan Lal Majitia in Hindi and Professor Rajnikant Nayak in English. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani Delhi. Shri Dobhal ne kaha ki vaishvik aapurti

0: महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1 अरब 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न सिर्फ सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति पीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी की कल शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा है कि उड़ान योजना के अगले चरण का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना और अगले 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को यात्रा करने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में आज उड़ान के अगले चरण पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संशोधित योजना में व्यवहार्यता अंतर्निधि के लिए पात्रता का विस्तार किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 के मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्गिम के एडजबेस्टन में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से पराजित किया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for the mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today.
4: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
3: Defence Minister Rajnath Singh has emphasized that the government's endeavour is to build an India where borders are not only secured but also the most connected.

0: said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. Mr. Singh was addressing the Border Road Organization BRO Tech Symposium in New Delhi. The Supreme Court today voiced concern over the introduction of a third language in Class 9 under the CBSE curriculum, observing it would increase the stress level of students. The Apex Court has suggested that it be introduced in Class 5 or Class 6 so that students can cope with it. Hearing another case, the Apex Court today directed also.
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: हाँ हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
2: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
1: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
2: देखिए सर, खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
1: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
2: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे। जैसा आप आलोक सर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज़ सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
1: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
2: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
2: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर एंथोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गाना गीत सुनना है।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेखवार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्यवर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, फरेबी, धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को

0: अगर मिल भी जाए तो क्या है।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से,
2: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ भोपाल से।
1: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
2: बढ़िया हूँ।
1: क्या कर रहे हैं इस समय?
2: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में है।
1: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
2: जी जी जी।
1: क्या समय है आपके आने का?
2: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
1: और रात तक?
2: 9:30 बजे तक।
1: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
2: जी जी।
1: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
2: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
1: आप भी कुक का काम करते हैं?
2: जी जी, मैं केक बनाता
1: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
2: नॉर्मली चलता है पाइन एपल, ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
1: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
2: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल रहा है।
1: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
2: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
1: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
2: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
1: गाने के बोल बताइए।
2: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
1: चलिए, आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया है। मजाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: सर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जोन है, लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुसोता संघ बस स्टैंड बंदा बिल्डिंग से लक्ष्य को चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है और नाश्ता भी अब खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के। तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं। और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं। और वे हमारी तो चाय रखती ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कुल्लड़ में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश गीत, और जो 3 बजे सेतुशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर घूमने के लिए, बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में।
1: जी जी, जी।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी
1: और
0: पड़ती
1: आपको
0: है?
1: बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है, और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊं, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है, और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं, फसल आएगी, तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है, और उसके बाद में जब फफूंद होती है, कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा।
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप्स के आने से हमें, आपको बताऊं, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन, और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कर रही हूँ विविध भारती से।
1: मंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप विजय जी? बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा, तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष? कोई
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी। सभी सखी सहेली हेलो कह ली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे, अभी जो शुरू हो गए ना वो मन चाहे गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी पास में है वो भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं एएम पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा,

0: सुनता हूँ मैं।
1: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं।
0: ओ बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
0: जो रेडियो मेरे पास आए, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दिन, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
1: वो अभी भी आपके पास है?
0: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, वो अपर्णा के दो रेडियो है मेरे पास अभी।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममताज और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
1: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बजनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी, स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए, आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है, वो साइड पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब है
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8760-2888-0222-400-2462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कल लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रेल मंडल के पिस्का और मुरी स्टेशन तथा चक्रधरपुर रेल मंडल के विमलगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 18 और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कम भागीदारी पर चिंता जताते हुए बताया कि 96% से अधिक मतदाताओं को फॉर्म बांटे जा चुके हैं और आधे से अधिक का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। हजारीबाग में स्कॉन द्वारा पहली बार भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हरे कृष्णा महामंत्र पर झूमते नजर आए। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण देश के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया झारखंड का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक रथ रहा, जिसे बिजली के तारों से बचाने के लिए रिमोट से 16 से 40 फीट तक छोटा बड़ा किया जा सकता है।

विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही विभागीय समीक्षा बैठकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन बैठकों को महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिले जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि DMFT फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। लोहरदगा गुमला मुख्य पथ पर आज एक अनियंत्रित अज्ञात ट्रेलर ने बाइक सवार बतख विक्रेता को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भाग रहे वाहन को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। CCTV की मदद से फरार ट्रेलर की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कुछ सुरफिरे आपके दिलों से खेल जाते हैं, जज्बातों पे चोट कर जाते हैं, यहां तक कि आपकी जिंदगी से भी खेल जाते हैं कुछ लोग, और फिर दम घुटने लगता है। एक शरारत, एक धोखा, एक जालसाजी जिंदगी में तूफान पैदा कर देती है।

जब तुमने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे थे ना, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे थे। हाँ, जुल्फों के पेच अक्सर उलझा देते हैं प्यार को, जैसे कि हम उलझ कर रह गए, है ना? जितनी जल्दी हम प्रेम की कैद में जाना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी सब छूट जाता है अक्सर, क्योंकि प्यार तो धीमी धीमी आंच पर पककर ही ऊष्मा और स्वाद देता है। हाँ।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीमार शब्दों से प्यार रोने लगता है, वहीं शब्द जब गहरे एहसास से आते हैं तो वही प्यार गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, नाचने लगता है और झूमने लगता है। शब्दों के इस खेल में कब शब्द बाण बन जाते हैं और कब शूल, क्या पता। लेकिन सच तो ये है कि प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। हाँ, प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए।

कहते हैं इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो किसी की भी मोहब्बत अधूरी न हो। कुछ प्रेम कहानियां बिना शोर के भी परवान चढ़ जाती हैं, तो कुछ शोर शराबे में ही दब कर रह जाती हैं। तब वो खरोंच, वो याद, वो इश्क जो एक तरफा था, सब दफन हो जाते हैं। असल में रिश्ते कमिटमेंट मांगते हैं, केमिस्ट्री नहीं।

प्यार में परत दर परत हम दिल की दीवारों में नए नए रंग चढ़ाते चले जाते हैं। प्रेम का रंग घोलकर हम उन दीवारों को रंगते चले जाते हैं। फिर एक रोज किसी ठोकर से या गहरी सीलन से वो परतें हटने लगती हैं और तब पीछे से वो धूसर रंग झांक रहा होता है। अरे, किसी को बिना शर्त चाहकर देखो तो कभी। दिल कोई प्रयोगशाला नहीं है और प्रेम कोई कांच की नली नहीं जिसे मनमर्जी से गर्म और ठंडा करके परखा जाए।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 6:02 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 6:30 का समय है कृषकों को संबोधित हमारे कार्यक्रम किसानवाणी का। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में और शाम 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल। शाम 7:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम उजाले की ओर का समय है शाम 7:45। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुन सकेंगे और 8:30 का समय है क्षेत्रीय फिल्म संगीत के कार्यक्रम सरहदें का। रात्रि 8:45 पर हम शामिल होंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:10 पर उर्दू में समाचार, 9:30 पर विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों का समय है और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हमारे डाल्टनगंज केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी आज की सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम है युवाणी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज के युवाणी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सबसे पहले एक वार्ता। विषय है नदियों को साफ रखना हमारा कर्तव्य। वार्ताकार हैं सृष्टि सिंह।
1: प्रदूषण से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जल प्रदूषण, विशेषकर नदी प्रदूषण के भविष्य की कल्पना करना अत्यंत हृदय विदायक है। प्राचीन काल में नदियों में विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विपरीत आज नदियों स्वयं विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रभावित। नदियों में बढ़ती हुई गंदगी अब चिंता का विषय बन चुकी है। नदियों के महत्व को मनुष्य अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो बिल्कुल नमकीन है। यह पानी पीने योग्य नहीं है। सिर्फ 3% जल पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हिसाब से हम नदियों का संरक्षण कर सकते हैं। नदियों में प्रत्येक दिन डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का पानी, कचरा जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी शुद्ध जल के लिए तरस जाएगी। इससे पानी गंदा और जहरीला हो रहा है। जलाशयों में रहने वाले जीव, मछली, पानी के अंदर पेड़ पौधे सब मर जाते हैं। प्रत्येक दिन इतने अधिक रसायन के कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए नदियों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। नदियों को स्वच्छ रखना मनुष्य का कर्तव्य है। ये सबको मिलकर करना होगा। नदियों के निकट रहने वाले लोग नदियों को गंदा कर रहे हैं। अक्सर गांव में लोग नदियों अथवा तालाबों में अपनी निजी गतिविधियों को करते हुए पाए जाते हैं। इन्हीं सब वजहों से नदियों का पानी अस्वच्छ हो रहा है। यह गतिविधियां हैं जैसे कपड़े धोना, पशुओं को स्नान इत्यादि। इन सभी कार्यों की वजह से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा नदियों के जल में प्रवाहित किया जा रहा है। इससे नदियों का जल बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। हम नदियों के जल सैलाब से खुद डरते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से घबराते हैं और खुद ही प्रलय ला रहे हैं। मनुष्य बरसों से औद्योगिक उन्नति के लिए प्रकृति और नदियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने भारत की नदियों को साफ करने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है। नमामि गंगे और नमामि देवी नर्मदे कुछ उदाहरण है, जो भारत के नदियों को साफ करने के उद्देश्य से शुरू किए गए। सरकार को कचरे के पूर्ण चक्रण के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाने चाहिए। प्लास्टिक जैसे कचरे को जल निकायों में फेंकने के बजाय पुनः उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिकरण सभी पहलुओं में बुरा नहीं है, लेकिन उचित अपशिष्ट प्रबंधन को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए नदियां हमारी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए हमें इसकी शुद्धता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व स्तर पर ताजे पानी की कमी का सामना कर रहे होंगे। नदियों को स्वच्छ रखने के उपाय। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सर्वप्रथम नदी में मिलने वाले नालों को बंद करना चाहिए। तटों पर निर्मित उद्योग से नदी में मिलने वाले रासायनिक पदार्थों पर पूरी तरह पाबंदी लगानी चाहिए। साथ ही शहरों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों का उपयोग होना चाहिए, जिससे नदी में साफ जल नहीं पहुंचे। नदियों को लगातार प्रदूषित किया जा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कानूनों और नियमों का भी निर्माण किया गया है। इन नियमों को बारे में गांव, शहरों और कल कारखानों को इस संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए NGT नियमों का पालन हो, देश की नदी नीति घोषित की जाए, पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं देश और प्रदेश स्तर की समितियां बनाई जाए जो नदी परियोजनाओं के नियम में सहयोग दें। भारत की नदियां मुख्य रूप से वर्षा से पोषित होती हैं, तो वे साल भर यहाँ तक कि सूखे मौसमों में भी कैसे बहती हैं। वनों के कारण बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी 12 माह ही नदियां बहती हैं। इसमें पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेददार बना देती हैं, जिससे वह बारिश के पानी सोख लेती है और उसे थाम कर रखती है। मिट्टी में मौजूद यह जल साल भर धीरे धीरे नदी में मिलता रहता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को नदियों के किनारे लगाने चाहिए। हमें वृक्षों को बचाना होगा, क्योंकि वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो नदियों का जल स्रोत भी बढ़ेगा। भारत सरकार के अनुसार गंगा सफाई अभियान कोई छोटी योजना नहीं है, यह विशाल योजना है जिसे करने के कई वर्ष लगेंगे। सरकार के साथ देश के नागरिकों को भी इसमें योगदान देना पड़ेगा, तभी यह अभियान सही मायनों में सफल हो पाएगा। हमें सभी को नदियों को साफ रखने के अभियान में साथ देना होगा। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, नदियों का जल पवित्र हुआ करता था। सभी देशवासियों को जागरूक हो जाना चाहिए और नदियों को स्वच्छ रखने की शपथ ले लेनी चाहिए। नदियां हमारी प्यास बुझाती है, नदियों को हम पूजते हैं, इसलिए नदियों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियां, बोतल या अन्य सामग्रियां नदियों में या उनके किनारे नहीं फेंकना चाहिए। कचरा उड़कर नदियों में चला जाता है। नदियों में सिर्फ मिट्टी के मूर्ति विसर्जित करनी चाहिए, मूर्ति में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। नदियों का अस्तित्व खतरे में है, नदियां सदा से ही पवित्र और पूजनीय प्राकृतिक जल स्रोत रही है, हमने इनको कचरा पात्र में के रूप में बदल दिया है। यही वजह है कि नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। भारत में नदी प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और अपनी प्रदूषण नियंत्रण नीतियों और योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, ये फिल्मी गीत।

हमारे श्रोता सुन रहे थे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में हमारे श्रोता सुनेंगे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद आज शाम भव्य धर्म रथ को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया गया। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज पतरातू डैम परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और मयूराक्षी तथा कोयल नाम के 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रोशन लाल चौधरी और ममता देवी भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE द्वारा 9वीं कक्षा में 3री भाषा लागू करने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि 9वीं कक्षा से 3री भाषा शुरू न की जाए, क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक तनाव बढ़ता है। कोडरमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 247 लीटर विदेशी शराब और 30 लीटर बियर बरामद की है। गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार से लाई जा रही इस शराब की कीमत करीब 1,75,000 रुपए है। मौके से बिहार निवासी 4 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य भर में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके प्रभाव से रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार और बोकारो सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। राज्य में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

हमारे श्रोता सुन रहे थे मुख्य प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, जो सर्वप्रथम दलहनी की खेती से संबंधित आज बातें आपके साथ साझा करेंगे। आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी मेरा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बातें करेंगे मूंग की उन्नत खेती के बारे में। जी, इसके लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, और ग्रीष्मकालीन बुआई 25 फरवरी से 15 मार्च और खरीफ बुआई जून जुलाई में करें।
0: जी,
1: प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज को थायरम या कार्बेडाजिम से उपचारित करें। बुआई के समय 25 किलो DAP व 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का व्यवहार करें।
0: जी हाँ, किसान भाइयों, हम आपको यह भी बताते चलें कि मूंग के खेत की अच्छी पैदावार के लिए हमें सर्वप्रथम गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर और समतल बना लेना काफ़ी उचित होता है, और कतारों में बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी आप 10 से 12 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच अवश्य रखिए, और बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना जरूर हमें चाहिए।
1: और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जान लें कि कौन कौन से उन्नत किस्म हैं, जिसमें पूसा विशाल, MH 421, IPM 2 और 3, STAR 444, यह सूखा और रोगों के लिए प्रति सहनशील है। अगर हम सिंचाई और उर्वरक की बात करें किसान भाई, तो मूंग की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण, फूल आने और फली बनते समय हल्की सिंचाई करना पर्याप्त होता है, क्योंकि मूंग की फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जड़ों में स्थिर करती हैं, इसलिए अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बुआई के समय बेसल डोज के रूप में DAP और माइक्रोराइजा का प्रयोग लाभकारी होता है।
0: जी हाँ किसान बंधु, मूंग में पीला मोजेक वायरस और इल्ली का प्रकोप अक्सर देखा जाता है, और इनसे बचाव के लिए बुआई से पहले बीजों का उपचार बहुत आवश्यक हो जाता है, और आवश्यकता अनुसार इमीडा क्लोरप्रीड या थाया मेथोमैक्सम का छिड़काव आप करिए, और खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन का उपयोग आप कर सकते हैं। और उपज और कटाई की जहाँ तक बात है किसान बंधु, तो
1: फसल लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब फलियाँ पीली पड़ने लगें तब तोड़ाई करें। वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने पर प्रति एकड़ औसतन 6 से 8 क्विंटल तक उपज आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
0: जी, अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान भाई करें तो निश्चित रूप से वो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे ग्रामीण भाइयों को चाहिए कि वैज्ञानिक तकनीकियाँ जरूर अपनाएं,
1: चूँकि आपकी मेहनत और आपकी जो लागत है, अगर आप सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: जी, और अब बातें हम लोग करेंगे उड़द की।
1: तो किसान भाई, जहाँ तक उड़द की बात है, तो उड़द की सफल खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। खरीफ में जून जुलाई और जायद में फरवरी मार्च बुआई का सही समय है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेडाजिम या ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम से उपचारित अवश्य करें। प्रति एकड़ 8 से 10 किलो बीज का प्रयोग करें।
0: जी,
1: अगर हम उन्नत खेती की बात करें किसान भाई, तो सबसे पहले खेत की तैयारी, पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 बार

0: कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना दें। अंतिम जुताई से पहले प्रति एकड़ 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उन्नत बीजों का चयन करें ताकि पैदावार अच्छी मिले। इसमें प्रमुख किस्में हैं शेखर पंत, उरद 31, आज़ाद उरद 3, यूपी 94, इसके जो है उन्नत किस्म है। बुआई से पहले प्रति किलो बीज को 2.5 ग्राम थीरम या कार्बेडाजिम और बाद में राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित करें। बीज दर खरीफ के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और जायद के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। बीज की बुआई सीड ड्रिल से करें जिससे कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
1: जी हाँ किसान भाई, और हम यह भी बता दें आपको कि उड़द की दलहनी फसल को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और बुआई के समय बेसल डोज के रूप में प्रति एकड़ लगभग DAP का जो हम उपयोग करेंगे उसमें 25 से 30 किलो, पोटाश 15 किलो और सल्फर 10 किलो। अगर माइकोराइजा का इस्तेमाल ना कर रहे हों तब आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बातें अब सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की।
0: किसान भाई, खरीफ की फसल में सामान्यतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बारिश न होने पर नमी बनाए रखें। गर्मी की फसल में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 सिंचाई आवश्यक है। फूल आने और फली बनते समय खेत में नमी की कमी न होने दें। खरपतवारों को रोकने के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करें। फसल 20 से 25 दिन की होने पर एक निराई गुड़ाई जरूर करें। कीट और रोग प्रबंधन के लिए किसान भाई, सफ़ेद मक्खी और जो माहू, इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोप्रीड या रोगोर का छिड़काव करें। पीला मोजक वायरस जो हो उसके लिए, यह रोग पत्तियों को पीला कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए रोगरोधी किस्में जैसे PU94 का चुनाव करें और शुरुआती लक्षण दिखने पर डाइमेथियोट का छिड़काव करें। ये तो बातें हुई मूंग और उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में।
1: जी हाँ, और हमारे किसान भाई लोग अब दलहनी खेती के लिए सचेत हो जाएं और समय बहुत कम है क्योंकि जुलाई आज हम लोग मध्य में हैं,
0: मध्य जुलाई बीतने को है, इसलिए आप यथाशीघ्र
1: दलहनी फसलों की खेती में जुट जाएं, खासकर मूंग और उड़द, क्योंकि बहुत आमदनी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमारे किसान भाई के लिए एक प्यारा सा लोकगीत, गायक कलाकार हैं शारदा सिन्हा।

0: किसान भाई बहन आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत। और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं वार्ता, विषय है जलवायु अनुकूल खेती और वार्ताकार हैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह।
1: जलवायु अनुकूल खेती, जी हाँ किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन अब सैद्धांतिक बौद्धिक परिचर्चा से बाहर निकलकर वास्तविकता बन चुका है। साल दर साल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की खबरें आम हो जाती हैं। ये दुष्प्रभाव लगभग हर क्षेत्र में मानवता के अस्तित्व पर संकट के रूप में उभरे हैं और कृषि इनमें सबसे प्रमुख है। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन अब सैद्धांतिक बौद्धिक परिचर्चा से बाहर निकलकर वास्तविकता बन चुका है। साल दर साल न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग अन्य हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की खबरें आम हो गई हैं। ये दुष्प्रभाव आजकल हर क्षेत्र में मानवता के अस्तित्व पर संकट के रूप में मंडराने लगे हैं और कृषि इनमें सबसे प्रमुख है। एक और दिक्कत की बात यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कम होना एक आम समस्या बन रही है। ऐसे में टिकाऊ खेती के सबसे रास्ते ढूंढना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 900 करोड़ तक पहुंच जाएगी और उसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व के मौजूदा खाद्य उत्पादन के में लगभग 70% की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया भर में कृषि के सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती हर वर्ष पहले की तुलना में तेजी से बढ़ती जा रही है। श्रोताओं, जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन के लिए नए और इनोवेटिव तौर तरीके तथा तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि यदि जलवायु परिवर्तन के कम प्रभावित होने वाले फसलों की ओर बढ़ना है तो उसकी शुरुआत सही तरह के बीजों के विकास के से ही करनी होगी। बीजों के साथ कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले तकनीकों के स्मार्ट मैनेजमेंट पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है। ये तकनीकें न सिर्फ कम उत्पादन की समस्या पर केंद्रित होनी चाहिए बल्कि कृषि से उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होना चाहिए। FMO में इन तथ्यों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एक व्यवस्था का निर्माण किया है जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए देसी देशों द्वारा अपनाए जाने चाहिए। श्रोताओं, बीज जलवायु परिवर्तन के भीषण परिणामों को झेलने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। उनके लिए जरूरी है कि वे कम से कम पानी, खाद, कीटनाशकों और अन्य इनपुट के साथ अच्छा उत्पादन दे सकें। सूखा, बाढ़, बहुत ज़्यादा या कम तापमान और खारापन इत्यादि ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सबसे सामान्य लक्षण हैं। लेकिन इनके अलावा कीटों के हमले में वृद्धि पौधों में और पोलिनेशन के स्तर पर पाले की मार में बढ़ोतरी, फसलों में दाने आने के वक्त उच्च तापमान, अति वृष्टि और मिट्टी का बंजर होना अन्य मुश्किलें हैं जो जलवायु परिवर्तन के साथ बढ़कर कृषि उत्पादन पर सीधी असर डालती हैं। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के साथ पानी का खाद्यान्न खारापन बढ़ेगा और वर्षा की अनियमितता इसमें वायुमंडल में नमी का अनुपात भी असंतुलित होगा। इससे बहुत कम नमी वाले इलाकों की मात्रा बढ़ेगी और जमीन तेजी से बंजर भी होगी। ऐसी जमीन को खेती के काम में लाने के लिए ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक बहुत कारगर हो सकता है। सबसे खास बात तो यह है श्रोताओं कि इन तकनीकों में किसानों को न तो कोई अतिरिक्त खर्च करना होता है और न ही किसी मशीन की आवश्यकता होती है। समय से मिट्टी तैयार करना, गहरी जुताई, पराली की मोल्चिंग, जमीन के लेवलिंग, स्लीपिंग और मेड़ बांधने जैसे पारंपरिक तरीके से ड्राई लैंड फार्मिंग में सफलता हासिल की जा सकती है। अनाज, मोटे अनाज, लिंगवन, दलहन, तिलहन, कपास जैसी फसलों के लिए भी यह तकनीक अच्छी नतीजे देती हैं। मौजूदा समय में भी भारत में 80% मक्का, 90% बाजरा, लगभग 95% दालें और 75% तिलहन ड्राई लैंड में खेती से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, आम तौर पर जब कृषि और जलवायु परिवर्तन की चर्चा होती है तो उस अक्सर कृषि की पीड़ित पक्ष ही माना जाता है, लेकिन कृषि और जलवायु परिवर्तन का आपसी संबंध दरअसल एक दुष्फसा है। नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा का एक बड़ा स्रोत कृषि है। किसान भाइयों, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान के अलावा कृषि के वायुमंडल पर और भी कई दुष्प्रभाव हैं। कृषि उंगली के कटने और भूमि के इस्तेमाल में

क्षमा करेंगे, कृषि जंगलों के कटने और भूमि के इस्तेमाल में बदलाव के लिए जिम्मेदार है, जिससे भूमि कार्बन डाइऑक्साइड को सहेजने वाले एक कुदरती बैंक की जगह उसे वायुमंडल में छोड़ने लगती हैं। ऐसे में विश्व की लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो चरणों में काम करने की आवश्यकता है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के असर में वर्तमान उत्पादन को बचाना, और दूसरा, तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना। जी हां किसान भाइयों, इसलिए जब भावी पीढ़ियों के लिए खेती का एक टिकाऊ मॉडल विकसित करने की बात आती है, तो प्रयास न सिर्फ कृषि की जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाने का किया जाना चाहिए, बल्कि कृषि के तौर तरीकों में ऐसे बदलाव किए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में इसकी भूमिका कम की जा सके। दूसरे शब्दों में किसान भाइयों, दुनिया को ऐसी टिकाऊ खेती के लिए जलवायु अनुकूल खेती, जिसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए ही NFO से जलवायु अनुकूल खेती की रणनीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कुछ खास प्रक्रियाओं के पालन की सिफारिश की जाती है। पहला आवश्यक है कि खाद्य और कृषि उत्पादों की सुरक्षा के लिए बीजों में इस तरह आनुवांशिक बदलाव किए जाएं ताकि वे अपने प्राकृतिक माहौल में खेती के लायक ढल सकें। प्रतिरोधी चीज़ों का संरक्षण किया जाए, यह बहुत आवश्यक है कि बीजों के विकास के लिए भी कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जब तक किसान का उन पर पूरा भरोसा नहीं होगा, उसे व्यवहारिक तौर पर खेतों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ऐसे बीजों के विकास में किसानों की आजीविका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लगभग सभी प्रमुख फसलों जैसे मक्का, धान, गेहूं इत्यादि प्रायः मोनोकल्चर सिस्टम में उगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशकों और खरपतवारों की जरूरत होती है। लेकिन 2006 में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई है, यह प्रमाणित किया गया है कि ज़्यादा विविधता वाली फसलों के साथ बेहतर रोग प्रतिरोधी क्षमता, आर्थिक स्थिरता और मुनाफा हासिल किया जा सकता है। इसलिए किसानों में इसे लेकर जागरूकता पैदा करने की बहुत ही आवश्यकता है। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के साथ ही फसलों पर कीटों, बीमारियों और अवांछित खरपतवारों का खतरा बढ़ता जाएगा। इसे नियंत्रित करने के लिए तमाम मौजूदा कीट प्रबंधन तकनीकों की एकीकृत करने की आवश्यकता है। IPM के अंतर्गत कीटों की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करने और कृषि परिस्थिति तक तंत्र पर न्यूनतम दुष्प्रभाव पैदा किए बिना ऐसी कीट प्रबंधन टेक्नोलॉजी की विकसित किया जाता है जो किसानों के लिए आर्थिक तौर पर भी वहन करने योग्य हो सके। श्रोताओं, कृषिगत सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पहले ही एक बड़ी समस्या के रूप में उभरने लगी है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते परिमाण के साथ ही यह समस्या भी बढ़ती जाती है। वर्षा की मात्रा और आवृत्ति में हो रहे अनिश्चित बदलाव, जलस्रोतों के सूखने और भूजल के समाप्त होने के साथ ही आने वाले वर्षों में वर्षा सिंचित और सिंचाई के माध्यमों में

0: में युक्त खेती की तरह ही खेतों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसलिए टिकाऊ खेती के लिए जल संसाधनों का सही प्रबंधन और प्राथमिकता में है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए मिट्टी और पानी को बचाने के उपायों पर काम करना होगा। सिंचाई के पारंपरिक साधनों की जगह आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यह काम किया जा सकता है ताकि इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने खेतों में अधिक से अधिक अनाज उपजाएं और बढ़ती बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या को 2 जून की रोटी मुहैया कराने के लिए हम उस ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता जलवायु अनुकूल खेती, वार्ताकार थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। इसी के साथ ही आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाज़त।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं की, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त है। आज हमारे साथ हैं भाई संतोष जी। संतोष जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार आपको भी और तमाम ग्रामीण भाई बहन को हमारा सप्रेम नमस्कार। तो आज सर्वप्रथम हम लोग बातें करते हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा की। किसान भाई बहन, मौसम ठंडा एवं अत्यधिक नम बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। वर्षा, गरज, चमक और तेज हवाओं के कारण मौसम अस्थिर बना रहेगा। आंधी तूफान और बिजली का कड़कना, तेज हवाओं के झोंके, जमीन के पास तेज हवाएं, ये आप फिलहाल महसूस कर सकते हैं। और फसलों का गिरना, फलों का टूटना आम बात है। किसान बंधु,
1: किसान भाई, किसी भी फसल की बुआई से पहले जल निकासी सुनिश्चित करें, तभी बुआई के लिए जाएं। जिन किसान का खेत अभी भी परती रह गया हो, वे अविलंब विभिन्न फसलों की बुआई अनुशंसित विधि से करें। धान के फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बुआई मेड़ बनाकर ही करें। जिन खेतों में धान का रोपा करना हो, वैसे खेतों के मेड़ को दुरुस्त रखें तथा खेत को जोतकर मिट्टी को खुला छोड़ दें, जिससे जल जमाव के साथ साथ खेत में मौजूद खरपतवार भी भली भांति सड़ जाए। संक्रमण से बचने और वायु परिसंचरण में सुधार के लिए क्षतिग्रस्त सड़ते हुए फलों और पीले रोगग्रस्त पत्तियों को हटा दें। जो किसान पहले ही बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया हो, तो खाली जगह में पुनः बीज बोएं, या अगर एक ही जगह पौधों की संख्या ज़्यादा हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली जगह में लगा दें। खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें और जल निकासी की सुविधा रखें। मौसम साफ होने तक खाद व कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे डोभे का निर्माण करें।
2: जी हाँ किसान बंधु, हम आपको यह भी बता दें ग्रामीण भाई बहन की टमाटर, बैंगन तथा मिर्च की फसल जो 35 से 40 दिन पुराने हो, उसमें निराई गुड़ाई का कार्य आप अवश्य करिए और खर पतवार को नियंत्रित रखिए। किसान बंधु, अगर हम रागी की बात करें तो यह भी बता दें किसान भाई बहन कि 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई आप जरूर कर दीजिए और रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित कर लीजिए किसान भाई। और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखिए। अगर मक्का की बात की जाए तो वर्षा के बाद या साफ मौसम होने पर मक्के की फसल में फफूंद संक्रमण को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करिए।
1: हम चावल की बात करें किसान भाई, तो वे 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधे को 20x10 सेंटीमीटर के अंतर पर तैयार खेतों में रोपें। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई से पहले इस्तेमाल करें। जिन धान के खेतों में पानी भरा हुआ है, उसमें 1 पैकेट प्रति एकड़ नील हरित शैवाल डालें, क्योंकि यह नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत है। मौजूदा मौसम की स्थिति, धान की नर्सरी में धान के ब्लास्ट और जीवाणुजनित पत्ती झुलसा रोग के संक्रमण का कारण बन सकती है। यदि नर्सरी में लीफ ब्लास्ट दिखाई देता है तो टेबिकोनोजोल 50% 0.4 ग्राम या आइसोप्रोथियोन 40 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव।

0: सात से दस दिनों के अंतराल पर छिड़काव दोहराएं। बीच बीच में सूखा और गीला मौसम, जल्दी बोई गई नर्सरी में BLB के प्रकोप के लिए अनुकूल है।
1: जी हाँ किसान बंधु, और अगर बैंगन की बात की जाए तो पिछली बारिश के कारण मिर्च और बैंगन में फल सड़न का संक्रमण होने की संभावना बताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यदि ऐसा हो तो कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव आप करिए। याद रखिएगा 50% WP। और किसान बंधु यदि आवश्यक हो तो 15 दिनों के अंतराल पर आप दूसरा और तीसरा छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और टमाटर की जहां तक बात है तो जून जुलाई में टमाटर की नर्सरी में पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडे 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लीजिए। बीज को बोने से 24 घंटे पहले बीज उपचारित करना कभी नहीं भूलिए। उन्नत किस्में हैं टमाटर की, स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा संकर 1 और सुरक्षा।
0: किसान भाई, पशुपालन के लिए जुगाली करने वाले पशुओं को नई घास चरने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नेमोटोड बीमारी की संभावना रहती है, जिनमें एनीमिया और दस्त जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके लिए फेनवेंडाजोल 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से पशुओं को दें।
1: जी हाँ ग्रामीण भाई बहन, तो ये तो बातें हो गई। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर, रांची, झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। और ग्रामीण बंधु, कार्यक्रम में अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: और अंतराल के बाद पुनः हाजिर हुए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी में।
7: आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता एक किसान से। गरमा मूंग एवं सब्जियों की खेती के बारे में भेंट वार्ताकार हैं कपिल देव ठाकुर, जो ग्राम तुकबेरा नवा बाजार पलामू के निवासी हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
6: स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाड़ी में। पलामू जिला के नवा बाजार प्रखंड के तुकबेरा गांव के एक सफल किसान हमारे साथ हैं कपिल देव ठाकुर, और ये जैविक खेती करके और विशेषकर जैविक खेती के साथ साथ ये मड़ुआ वगैरह की खेती करके बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जैविक खेती से इन्होंने अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसे काफ़ी बढ़ाया है। आज ये मानते हैं कि जैविक खेती जो है वो एक समृद्ध खेती है, जिससे हमारे किसान भाई की खेती फलती फूलती

खेती के साथ साथ ये मड़ुआ वगैरह की खेती करके बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जैविक खेती से इन्होंने अपनी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसे काफ़ी बढ़ाया है। आज ये मानते हैं कि जैविक खेती जो है वो एक समृद्ध खेती है, जिससे हमारे किसान भाई की खेती फलती फूलती।

0: कि रसायन से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और वास्तविकता यही थी कि रसायन के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन आज के समय में स्थिति इतना गंभीर हो गया कि रासायनिक खेती से एक ओर उत्पादन बढ़ रहा है तो एक ओर बीमारी भी बढ़ रहा है उससे। रसायन के उपयोग से जो उत्पादन लिया जा रहा है उससे बहुत बीमारियां बढ़ रही है, तो रसायन को छोड़ करके जो हमारा पारंपरिक जो उर्वरक देने का विधि था उसको अपनाया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। जैसे हम लोग पहले गोबर खेत में डाल देते थे, अब उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, और अनेक तरह के दवाएं बना रहे हैं जो इसको उपयोग करके हम उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं और वो विष मुक्त रहेगा, जहर मुक्त रहेगा।
1: जैविक खेती तैयार कैसे करते हैं कपिलदेव जी?
0: जी देखिए, क्या है ना कि उसमें विशेष कुछ नहीं है, सबसे ज़रूरी बातें हैं कि हम जब किसान हैं तो खेती गृहस्थी के साथ ही पशुपालन भी करना जरूरी है, बागवानी भी जरूरी है। तो जब हम पशुपालन करेंगे तो पशु का जो चारा का अवशेष है और पशु का जो मल मूत्र का जो उसका वस्तु है, यानी गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, तो उसको हम इकट्ठा करते हैं, और गोबर से, गोमूत्र से, और उसमें एक जीवा अमृत है।
1: अच्छा अच्छा।
0: जिसे हम गोबर, गोमूत्र और बेसन गुड़ डाल करके जीवा अमृत बनाते हैं, और वो जो है उसका नाम ही है अमृत।
1: अच्छा।
0: वो अमृत है, फसल के लिए अमृत है, तो उसकी तैयारी हम करते हैं और जीवा अमृत फसल में लगा डालते हैं, तो उससे जो है से रोग मुक्त फसल होता है,
1: तैयार होता है।
0: उससे जो उत्पादन मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, उसके खाने से रोग नहीं होगा बल्कि रोग दूर होता है।
1: और अब हम बातें कर लेते हैं कि ये जैविक खेती तो हमने तैयार कर ली, लेकिन बहुत बार इसमें जीवाश्म होता है, जैसे आपने बताया ये जीवामृत और घन जीवामृत और बीजामृत होता है, इसका क्या क्या उपयोग है, कैसे कहाँ कहाँ इसकी?
0: जैसे देखिए, आपका नाम से ही ये पता चल रहा है कि क्या है। आपने बीजामृत की बात की, तो बीजामृत का मतलब है कि बीज को उपचार करना, उपचारित करना, ये बीजामृत हुआ। जैसे गोमूत्र से तैयार किया हुआ जो औषधि, उसको कहिए कि औषधि है, और उससे बीज को जो उपचारित करते हैं, बीज का उपचार करके जब हम खेतों में डालते हैं तो ये बीजामृत का उपयोग हो गया। जीवामृत है उसे बढ़ावा देने के लिए, और घना जीवामृत की जो बात आपने कही, ये जो है उत्पादन बढ़ाने का इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसे बनाने की तरीका से बना करके इसे खेत में उपयोग किया जाए। और मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि रसायन को छोड़ें और जैविक खेती की ओर आवें, और उससे अधिक कम लागत में अधिक मुनाफा। मैं यही आपसे कहूँगा कि आप जैविक खेती की ओर ही आएं। मैं आपको अपना बता दूं, मैं अभी काला धान का खेती पिछले वर्ष से कर रहा हूं, जो एकदम पूर्णतः जैविक है, उसमें कुछ भी रसायन के नाम नहीं डाला जाता है। और काला नमक धान प्रजाति जो है वो शुगर फ्री है, यानी कहने का मतलब है कि जो धान हम रसायन से उत्पादन करते हैं वो विषयुक्त होता है, और जो हम जैविक से कर रहे हैं वो हमारा विष मुक्त है। तो हम सभी किसान भाइयों से चाहूंगा कि विष मुक्त खेती करें।
1: अच्छा, ये तो अब जैविक खेती हो गई, अब हम आते हैं मोटे अनाजों की खेती पर, मड़ुआ की क्या स्थिति है?
0: मड़ुआ हो गया, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज के लिए अभी जो है से वर्ष 23-24 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और उनका सोच कितना अच्छा है, जो देखिए वो मोटे अनाज को श्री अनाज से संबोधित किया है, इसे श्री अनाज बोले कि मोटे अनाज नहीं कहना है, वो अपमानित शब्द है, श्री अनाज कहना है, और श्री अनाज में 6 अनाजों को जो है सो सर्वप्रथम लाइन में रखे हुए हैं। तो हम किसान भाई से चाहेंगे कि मड़ुआ हुआ और ये कुल्थी हुआ, मिजरी हुआ, और इस तरह का खेती जो है वो विष मुक्त खेती करने का, ये विष मुक्त खेती पहले से होता

0: था। इसमें विशेष बातें ये है कि विकट परिस्थिति में भी इस तरह की खेती की जा सकती है। इनके लिए कम पानी की आवश्यकता है, मोटे अनाज की खेती करने के लिए कम पानी की आवश्यकता है। और आज जो हमारा परिवेश, हमारा जो समाज जिस स्तर पर पहुंच गया है, अगर मोटे अनाज का सेवन नहीं करते हैं तो कैंसर जैसे भयावह बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा और जीवन का अंत कर देना पड़ेगा। इसलिए मैं किसान भाई से भी आग्रह करूंगा कि मोटे अनाज की खेती करें, और मैं उपभोग करने वाले व्यक्ति से भी आग्रह करूंगा कि आप मोटे से मोटे अनाज का सेवन करें। इससे आप
1: अभी क्या लगा हुए हैं?
0: अभी तो हमारे पास मड़ुआ भी है, ज्वार बाजरा भी है, और कोदो के लगाने का हम विचार बना रहे हैं, लेकिन कोदो का बीज हमें अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं इस प्रचार प्रसार के माध्यम से ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 88090 90 342, अगर किसी सज्जन के पास कोदो का बीज है तो वो हमें कॉल करें।
1: अच्छा, कोदो को भी लगाना है?
0: कोदो को लगाना है।
1: बहुत सुंदर, चलिए। और ये तो जैविक खेती की हमने बातें कर ली, और हमारे किसान भाई को चाहिए कि हमारे किसान भाई जैविक खेती से जुड़े, जितना हो सके पारंपरिक खेती की ओर वो वापस आएँ, ताकि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बची रहे, जलधारण क्षमता रहे, और अच्छी तरह से उपज ले सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त कर सकते हैं। आप बाज़ार में जो जैविक खेती से जो तैयार करते हैं सब्जियां वगैरह, उसे बेचते हैं तो क्या आपको लाभ प्राप्त होता है, कैसा लगता है आपको?
0: देखिए, बाज़ार की जहाँ तक बात है, तो आप अपने से घर में उत्पादन कर रहे हैं वो पूर्ण तरह से आप उस पर विश्वसनीय हैं, लेकिन बाजार में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो उत्पादन करके जो मार्केट में ला रहे हैं, तो जो छोटे छोटे उपयोग करने वाले हैं, या मान लीजिए किसान भाई ही खरीद करके ला रहे हैं, बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो हर चीज़ का खेती नहीं करते हैं, उनको भी बाजार जाना पड़ता है, तो मैं उन्हें ये नहीं कहता हूँ कि वो जैविक नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है।
1: बिक्री के मामले में क्या है?
0: बिक्री के मामले में अगर आप जैविक कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से अपने से कर रहे हैं, तो आप 100 में 100% सही है, और आपका अगर उत्पादन कहीं भी कोई लेबोरेटरी में जांच होता है तो 100% जैविक मिलेगा, और इसका उत्पादन सही रहेगा, और इससे जो है से आपको उसका उचित दाम मिलेगा। आप कहीं भी विश्वास के साथ उससे कह सकते हैं कि मेरा 100% जैविक है, आप हम इतना उत्पादन इतना जो है से आपसे इसका कीमत लेंगे, तब इतना हम देंगे, एक कीमत निश्चित उसका, ये सब जो रासायनिक युक्त जो उत्पादन है उससे दुगना तीन गुना हमको उसका जो है से मुनाफा, उसका कीमत मिलता है।
1: चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए कपिल देव ठाकुर जी, और जैविक खेती से जुड़ी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, भेंटवार्ताकार थे कपिल देव ठाकुर, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी भाई संतोष कुमार। किसान भाई, अभी हम बात करेंगे पशुपालकों के लिए ध्यान दो, जो ध्यान में रखने वाली जो बात है, खासकर जुलाई के महीने में, तो इसमें किसान भाई अधिक जो दूध देने वाले अधिक जो पशु हैं उनको ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए पशु को कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 ml प्रतिदिन, 100 ग्राम प्रतिदिन आप पिलाएं, तथा 8 से 10 दिन तक पूरा दूध न निकालें। पशुओं के पेट के कीड़ों की रोकथाम करने के लिए बच्चा पैदा होने के 7 दिन 25 दिन 3 माह और 6 माह के अंतराल पर कीड़ेनाशक दवाई का खुराक पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दें, और इसके बाद प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर अवश्य देते रहें। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है, बीज मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। चारे के लिए ज्वार की उन्नत किस्में PC9, PC171 व SL44 की बुआई माह के मध्य तक पूरी कर लें। बीज मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करें। संतुलित पशु चारे के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे,

0: लोबिया और ग्वार के साथ मिलाकर बुआई करें। पशुओं को संतुलित चारा खिलाने से पशु के शरीर का समय पर विकास और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस बात का आप अवश्य ख्याल रखें जो हमारे पशुपालक भाई हैं। अब आप बताते हैं आज के मौसम का हाल। आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 85% जबकि शाम की आर्द्रता 80% दर्ज की गई। वर्षापात 0.28 मिलीमीटर।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, और इसी जानकारी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है।

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ खींचकर किया ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ। झारखंड के रेल यात्रियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिस्का, मुरी और विमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राज्य में SIR अभियान तेज। शहरी और युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों से बीमार और बुजुर्ग कैदियों की समय से पहले रिहाई की व्यापक नीति बनाने का दिया निर्देश। और नई दिल्ली के भारत टेक्स में झारखंड पेवेलियन की धूम। आधुनिक बांस स्टील उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए बने मुख्य आकर्षण। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरे पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ निकाली जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद आज शाम भव्य धर्म रथ को मौसीबाड़ी के लिए रवाना किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रथ खींचकर इस ऐतिहासिक महोत्सव की शुरुआत की। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ी भारी तैयारी और इतने बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और इतने लोगों की आस्था और यहाँ लोगों की उपस्थिति स्पष्ट करता है।

0: किया जा सकता है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया।
1: हजारीबाग में ये रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा फर्स्ट टाइम आयोजित किया जा रहा है और भक्त लोग काफी उत्साहित है, काफी मात्रा में भक्तों ने भाग लिया है, तहे दिल से ये रथ यात्रा को संपन्न करने में लगे हुए हैं। सब हरि बोल, जय जगन्नाथ। सड़कों पर एकदम रंगारंग कार्यक्रम है, सभी लोग कोई शंख दीप पुष्प से भगवान का अभिषेक हो रहा है और साइड साइड में भक्तों के लिए प्रसाद सेवा का आयोजन किया गया है।
0: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए झारखंड के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का कल लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रेल मंडल के पिस्का मुरी स्टेशन तथा चक्रधरपुर रेल मंडल के विमलगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। चक्रधरपुर के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस विमलगढ़ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।
2: 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विमलगढ़ स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनोग्रेशन होगा जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड फैसिलिटीज है वो सारी सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफी अच्छा और सुंदर बनाया गया है। इस प्रोग्राम करीब 15:30 बजे मतलब 3:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा।
0: राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज पतरातु डैम परिसर में म्यूजिकल फाउंटेन और मयूराक्षी तथा कोयल नाम के 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रोशनलाल चौधरी और ममता देवी भी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि इन नई सुविधाओं से पर्यटक अब झील में तैरते हुए रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकेंगे।
3: 2 सौगातें पतरातु पर्यटन को मिली हैं, पहला म्यूजिकल फाउंटेन और दूसरा फ्लोटिंग 2 रेस्टोरेंट्स। पतरातु आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का यह केंद्र बनेगा। 45 मिनट 50 मिनट की उस राइड में वो स्नैक्स के साथ पतरातु की झील का आनंद ले सकेंगे और म्यूजिकल फाउंटेन जो शाम को चलेगा तो वो भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र होगा।
0: राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 18 और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 96% से अधिक मतदाताओं को फॉर्म बांटे जा चुके हैं और आधे का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने वृद्ध और असाध्य बीमारियों से पीड़ित कैदियों की समय से पहले या शीघ्र रिहाई के लिए एक व्यापक नीति बनाने और उन्हें लागू करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में देश भर में एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारों को 3 महीने के भीतर नीति अधिसूचित करने की समय सीमा तय की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही विभागीय समीक्षा बैठकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन बैठकों को महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए मिले जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी कि DMFT फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।
4: सारंडा को देखना चाहिए, वहाँ पर किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं, उनके जीवन कैसा है। लेकिन जहाँ से आयरन ओर निकाले जाते हैं, मैग्नीज निकाले जाते हैं, उस क्षेत्र की हालत यानी वहाँ के लोगों के जीवन में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आज भी वहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
0: इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि यह सरकार प्रचंड जनादेश से बनी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने तथा

0: कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही यह समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
1: बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए हम लोग सरकार थोड़े ही बनाए हैं। सरकार बनी है जनादेश से और हम उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हम नियुक्तियां करते हैं, हम रोजगार देते हैं, हम एमओयू करके उसे धरातल पर उतारते हैं। विभिन्न विभागों में जो भी कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। समीक्षा बैठक तो उसी की कड़ी है।
0: नई दिल्ली के भारत टेक्स 2026 में झारखंड पवेलियन के बांस स्टील उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक प्रदर्शनी में बहरागोड़ा के अंजनेया बांस क्लस्टर द्वारा निर्मित आधुनिक बोतलें और मग धूम मचा रहे हैं। लेजर कटिंग तकनीक से बने ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। कोडरमा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो वाहनों से 247 लीटर विदेशी शराब और 30 लीटर बियर बरामद की है। गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार से लाई जा रही इस शराब की कीमत करीब 1,75,000 रुपए है। मौके से बिहार निवासी चार तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय क्षेत्र के कारण राज्य भर में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके प्रभाव से रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार और बोकारो सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 72 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। राज्य में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो रहा है। इसके तहत पहली प्रतियोगिता 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट कल से 21 जुलाई तक राज्य के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में खेली जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रथ खींचकर किया ऐतिहासिक महोत्सव का शुभारंभ। झारखंड के रेल यात्रियों को कल मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिस्का, मुरी और विमलगढ़ रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। राज्य में SIR अभियान तेज। शहरी और युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों से बीमार और बुजुर्ग कैदियों की समय से पहले रिहाई की व्यापक नीति बनाने का दिया निर्देश। और नई दिल्ली के भारत टेक्स में झारखंड पवेलियन की धूम। आधुनिक बांस स्टील उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए बने मुख्य आकर्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जिले में आजकल।
3: जिले में आज कल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा, महेशपुर एवं पाकुड़ के पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जाने को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जोर शोर से चल रहा है। त्रुटि रहित विशेष गहन पुनरीक्षण में बूथ लेवल पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, वॉलंटियर के साथ साथ प्रशासन से जुड़े अधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इस पर बात की उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने।
2: उनको अपने कॉपर टूटेबल जो कुछ कॉलम है भर कर और हस्ताक्षर करके वापस करने हैं। पिछले मतदाता 2003 से हमारे कैलेंडर भूमि है, वो मैपिंग की जा चुकी है और प्रथम चरण में हम लोग मतदाताओं से तुरंत निवेशन फॉर्म लेंगे, उसमें भी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। जहां पर कुछ भी मिसिंग गैप है उनके लिए सेकेंड चरण में दस्तावेजों के साथ ये जाएंगे और उस दवा पर

0: भी प्राप्त किए जाएंगे।
1: सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला परिवहन विभाग इन दिनों जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान परिवहन नियमों की जानकारी देने के अलावे दुपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। इस पर बात की जिला परिवहन पदाधिकारी मुजाहिद अंसारी ने।
2: नियमित हम लोगों का प्रयास रहता है कि जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए। इसी को लेकर के आज अडानी ट्रांसमिशन के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा जागरूकता का रिक्वेस्ट किया गया था हम लोगों के द्वारा। जो भी लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं उनको हिदायत देते हुए हेलमेट प्रदान किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी जान जोखिम में न डालें।
1: अध्यक्ष जूली कृष्णमुनि हेवम की अध्यक्षता में जिला परिषद की हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों में पानी बिजली की समस्याओं को दूर करने सहित विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। इस पर बात की जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने।
3: पानी और बिजली के लिए सख्त निर्देश दिया गया, जल्द नहीं होना चाहिए। और इस स्तर के एक साल से जिला परिषद की विकास योजना रुकी हुई थी, बहुत जल्द योजना का कार्य प्रारंभ कर दिया। खासकर हमारे जिला परिषद कार्यालय के सामने जो गंदगी पड़ा हुआ उसके लिए मैंने सीडब्ल्यूडी एनएच और डीबीएनडीसी सबको हमने कहा कि उसको सुधार।
1: काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाई गई चार नाबालिग युवतियों को जिला बाल कल्याण समिति ने उनके परिजनों को सौंपा है। इस पर बात की जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य विनोद कुमार प्रमाणिक ने।
4: इन लोगों को काम कराने के लिए कोई दलाल के द्वारा जो है पंजाब ले जाया गया था और वहां से जो है लोग जो है से भाग करके निकल के अपना घर के लिए गाड़ी पकड़ी थी, घर के घर में वो बॉम्बे पहुंच गई जहां पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया। जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ से पुलिस भेजा गया और उसके बाद बच्चे को यहाँ पहुंचाया गया जिसको आज हम लोग इनके गार्जियन को देंगे ताकि इस बच्चे जो पुनर्वास हो सके।
1: झारखंड पुलिस एसोसिएशन पाकुड़ शाखा के हुए चुनाव में राम आशीष सिंह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस पर बात की निर्वाचित अध्यक्ष राम आशीष सिंह ने।
5: हमारा जो सब सदस्य हमको जो अध्यक्ष पद में जिताए हैं उनका कल्याण का काम हम करेंगे, जितना हो सकेगा अपना जीवन लगा देंगे अपने समाज के कल्याण और वरीय पदाधिकारी के पास इन लोगों का समस्या को सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे और निदान कराने का कोशिश।
1: जिले में लगातार हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। वर्षा के बाद खेतों की जुताई में जुट गए हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
6: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता। विषय है मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम। वार्ताकार हैं चैतन्य शेखर।
1: मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक अराजनीतिक गैर लाभ प्राप्तकर्ता सोसाइटी के रूप में हुई थी। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषकर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों को लाभार्थ तथा सामान्यतः कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना था और उन्हें कार्यान्वित करना है, ताकि आवासीय स्कूलों विशेषकर छात्राओं के लिए स्थापना की जा सके और उन्हें आधुनिक शिक्षा सुलभ कराने के साथ साथ अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ से जुड़े अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजना मुख्यतः दो प्रकार की है, अर्थात छात्रों पर विशेष जोर देते हुए विद्यालयों, छात्रावासों, तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा के केंद्रों के निर्माण और विस्तार हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान तथा मेधावी छात्रों की छात्रवृत्तियां इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं इस प्रकार हैं। आवासीय विद्यालयों, कॉलेजों की स्थापना विस्तार हेतु

वित्तीय सहायता, व्यवसायिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र संस्थानों की स्थापना, सुदृढ़करण के लिए वित्तीय सहायता, प्रयोगशाला उपकरण तथा फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, छात्रावास भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्त, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साक्षात्कार पुरस्कार। मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन अपनी समग्र निधि पर अर्जित त्याग राशि से कर रहा है, जो इसकी आय का मुख्य स्रोत है। प्रतिष्ठान की समग्र निधि योजनागत सहायता स्वरूप उपलब्ध कराई गई है। प्रतिष्ठान की समग्र निधि वर्ष 2006-07 में 100 करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़कर 1249 करोड़ रुपए हो गई है। प्रतिष्ठान ने अपने गठन के समय से देश भर में 1548 गैर सरकारी संगठनों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण विस्तार के लिए तथा उपकरण, मशीनीकरण, फर्नीचर आदि की खरीद के लिए 199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं तथा 230,744 छात्राओं के लिए 276 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्तियां संवितरित की हैं। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा तथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को MPhil और PhD की उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप 5 वर्ष तक अध्येतावृत्त प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्त योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा UGC अधिनियम की धारा 2 और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय संस्थान शामिल होंगे तथा योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अध्येतावृत्त नियमित और पूर्णकालिक MPhil और PhD पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत स्रोत छात्राओं को प्रदान की जानी है। इस अध्येतावृत्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मॉडल अमेरिकन होगा। यह अनुदान आयोग समाचार पत्रों, इंटरनेटों, वेब पेज और अन्य मीडिया के माध्यम से उपयुक्त में प्रकाशित कर अध्येतावृत्त को अधिसूचित करेगा। इस अध्येतावृत्त को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। छात्र को अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय का होना अनिवार्य है। उसे UGC विज्ञापन के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रवेश शर्तों को पूरा करते हुए पंजीकरण कराया हुआ होना चाहिए। किसी भी छात्रा को एक ही संस्थान अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को MPhil PhD के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्त की पात्रता हेतु NET LLET परीक्षाओं को पहले से उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ताकि उन्हें बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा सकें, जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके रोजगार में वृद्धि पाएं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी ताकि अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसका प्रयोजन समम नीति एवं योजना समन्वय, मूल्यांकन एवं नियामक रूप से रेखा की समीक्षा तथा अल्पसंख्यक के लाभ के लिए विकास कार्यक्रमों को सरल बनाना था। नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धनों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के अलाभ में रहे व्यक्तियों तक पहुंचाने का है। इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से मिले। नए कार्यक्रमों

को अल्पसंख्यकों के ही क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का निश्चित भाग संचालित करने का निश्चय किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि जहां संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। छात्रवृत्तियां उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने अपने पूर्व अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों एवं उनके अभिभावकों अथवा संरक्षण की सभी स्रोतों से वार्षिक आय स्कूल और उच्च शिक्षा के अंतर्गत क्रमशः 1,00,000 रुपये एवं 2,00,000 रुपये से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पात्र छात्राओं की उपयुक्त संख्या उपलब्ध न हो तो निर्धारित किए गए में से शेष छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान की जाए। वर्ष में उपलब्ध अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित तथा निश्चित है। यह अवश्य है कि चयन के लिए प्राथमिकता अंकों की बजाय गरीबी पर जोर दिया जाए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति स्कीम में अब आय प्रमाण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति में आय का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था। शिक्षा के लिए अवसरों को बढ़ाना वर्तमान तथा नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सा सुनिश्चित करना है। स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता बढ़ाना तथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती ढांचागत विकास परियोजनाओं में से उन्हें उपयुक्त हिस्सा देते हुए अल्पसंख्यकों के जीवन यापन में सुधार लाना है। सामुदायिक हिस्सा एवं असंगति का नियंत्रण तथा प्रतिबंधित करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके नाम हैं कक्षा 1 से 10वीं मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, कक्षा 11 से PhD मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं अंडर ग्रेजुएट तथा तकनीकी तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए गुणवत्ता व साधन छात्रवृत्ति। यह महसूस किया गया है कि छात्रवृत्ति से अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। योजना से उनकी शिक्षा की बुनियाद पक्की होगी। शिक्षा के माध्यम से सशक्त होना योजना का उद्देश्य है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान होगा। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए गुणवत्ता व साधन आधारित छात्रवृत्ति की अन्य योजना में पेशेवर तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों को अपनाने पर बल दिया है। हर वर्ष पूरे देश में 20,000 छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के बीच वितरित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत स्कॉलरों का चयन ज्ञान के सभी क्षेत्रों में होता है। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का समुदाय चयन उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अध्येतावृत्त में से 30% छात्राओं के लिए निर्धारित की जाती है, शेष 70% सामान्य है। यदि महिला अभ्यर्थी की कमी है तो छात्रवृत्त उसी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्त के अनेक लाभ हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति के तहत 12,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है, यानी 11वीं की कक्षा के लिए 6,000 रुपए और 12वीं की कक्षा के लिए 6,000 रुपए छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी। छात्रा को 12वीं कक्षा की 6,000 की दूसरी किस्त 11वीं कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट और सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी। छात्रा की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 1,00,000 से कम वार्षिक होनी चाहिए। प्रवेश में पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा संस्थान को केंद्र या राज्य स्तर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए। एक बार छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र फिर से इसका लाभ नहीं उठा सकता है।
किसी अन्य माध्यम से छात्रवृत्ति करने वाली छात्रा इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगी। मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क या राशि का भुगतान नहीं करना होगा। आवेदन पत्र छात्र द्वारा सीधे संस्थान को डाक द्वारा भेजा जा सकता है या संस्थान के कार्यालय में हाथ से भेजा जा सकता है। किसी भी सेवा के लिए किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत पत्र चेक पंजीकरण द्वारा भेजे जाएंगे। अल्पसंख्यकों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम वरदान सिद्ध हुआ है। जिनकी शिक्षा आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पाती थी, वे यदि योग्य हैं तो मनचाही शिक्षा प्राप्त

कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत एक वार्ता विषय था मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम। वार्ताकार थे चैतन्य शेखर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है।

जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पूरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। आगे बढ़ना, इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर

0: प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।

हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगा हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत, कार्यक्रम देश गान।

0: वतन है वतन।
1: बंदा उसको स्वराज मिल गया, तो मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर बैठे, हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते, वो मेरे स्वराज।

हमारे श्रोता सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम देशगान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हम

0: मारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।

0: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

25 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है। यह मुतवातिर इजाफा मुल्क के मालियाती खिदमात के बढ़ते दायरे की पेशरफ्त और मुल्कगीर सतह पर मालियाती मसरूफियात की वसूत का अक्कास है। कंपोजिट एफआई इंडेक्स 97 इशारियों का अहाता करता है, जिसमें कोई बुनियादी साल नहीं होता। वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इको निज़ाम को भी परखता है। एफआई इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियाद पर शाया किया जाता है। अमेरिका ने आज सुबह सवेरे ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। अमरीकी फौज ने शुमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज पर भी फायरिंग की। अमरीका ने इस जहाज पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाया और खबरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल होता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात कही गई है, तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को आमनाए हुरमुज में मदाखलत करने की इजाजत नहीं देगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा जरई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगीलाल जाट के साथ भारत के जरई शोबे की पेशरफ्त में ICAR के तआवुन पर एक खसूसी बातचीत नशर करेगा। इस खसूसी बातचीत को मुल्कगीर हफ्तावार प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमे मौसमियात ने माहिगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संग मील उबूर किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बरह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और

0: जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि तीन मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम अब से बस कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसकी ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब चला।

वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आई साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आई विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे चुकी है दर्शन।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई, वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: Ủa thế á?
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के रजनीगंधा कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं सदाबहार फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर के फिल्मों के गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: जगबंधु हे गोसाई।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही